एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, सितंबर 1948 के बैसाख माह की तिथि 20। तदनुसार ईस्वी सन 2026 के मई महीने की 10 तारीख प्रातः के 5:58 होने वाले हैं। आज की सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी चाईबासा है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। उड़ीसा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Center. Mr. Modi will also address the gathering during the program. Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad and at around 3 p.m., he will lay the foundation stone and inaugurate the multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. TVK Chief C. Joseph Vijay will be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu in Chennai at 10 this morning. 9 TVK ministers are also expected to be sworn along with Mr. Vijay. Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar appointed Mr. Vijay as Chief Minister Designate after he secured the support of 120 MLAs in the 234-member House. Mr. Vijay was appointed CM after he presented letters of support from the VCK and the IUML, who have 2 MLAs each. The Governor has directed Mr. Vijay to seek a vote of confidence in the Assembly on or before May 13, 2026. President Draupadi Murmu has appointed N. Rangasamy as the Chief Minister of Puducherry. Following the appointment, Lieutenant Governor K. Kailash Nathan invited Rangasamy to form a new government in the Union Territory. Mr. Rangasamy will be sworn in as Chief Minister on May 13th. Mr. Rangasamy is set to assume office as Chief Minister for a fifth term after the AINRC-led NDA secured a comfortable victory in the Union Territory election. The top brass of the Congress party held a meeting in New Delhi yesterday to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general secretary in charge of the state Deepa Das Munshi, general secretary organization K.C. Venugopal and senior Kerala leaders Ramesh Chennathalaya and V.D. Satishan. The party said Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala Chief Minister and the name will be announced very soon. Defence Research and Development Organisation DRDO has successfully conducted an extensive long-duration test of its active

ये आकाशवाणी चाईवासा है FM के 101.7 MHz पर प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, जिसमें आज के कलाकार हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर।

पवित्र चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर का समय, भगवान का अभिजित मुहूर्त था, जब ब्रह्मलोक से ब्रह्मा समेत सभी देवता विमान सजाकर अवधपुरी के आकाश पर छा गए।

ये था आज का श्री रामचरितमानस गान, जिसमें कलाकार थे लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर। समर्पण प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम। इसमें आज सुनिए सुधा मल्होत्रा को।

जगत में कोई नहीं अपना। सुधा मल्होत्रा के गाए इस भक्ति संगीत के साथ ही समाप्त होता है आज का समर्पण कार्यक्रम।

सुगम संगीत होगा आपसे थोड़ी देर बाद। 7 बजे जोहार चाईवासा कार्यक्रम, 8 बजे समाचार प्रभात, उसके बाद मॉर्निंग न्यूज़, 8:30 बजे प्रादेशिक समाचार होंगे, 8:40 पर माटी की महक, उसके बाद विविधा कार्यक्रम होगा, 9:30 बजे रसरंजन, 10 बजे फिल्म संगीत और 10:30 बजे से आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे।

चलते चलते मौसम की जानकारी। आज दोपहर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में धूप और कुछ बादल छाए रहेंगे और साथ ही शाम तक गरज के साथ बारिश की संभावना है। आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, वर्तमान 7:22 पर जो तापमान है वो 23 डिग्री है और आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।

0: समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
3: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
4: तीन नाले बड़ा परिवार जो तो

0: ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ
1: श्रेलीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

स्वामी जी सनात्मि के साथ ही समाप्त हुआ चाहता है आज का कार्यक्रम जोहार चाईबासा FM के 101.7 मेगा हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र। प्रातः के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: pakinggan. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मंकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और

0: दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: तमिलनाडु में तमिलगा पेथरी कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
2: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पु से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस, वीसी के, वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
3: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
7: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमेरिकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से

0: 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H1B, H1B1, E3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
2: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर

0: मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स तथा संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अनुदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक कम हो सकेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में आंशिक बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री दीर्घावधि बाढ़ रोकथाम उपायों की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड की जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार पर राज्य की मूलभूत व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पतालों की स्थिति खराब है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। अन्नपूर्णा देवी ने दावा किया कि राज्य सरकार विकास के हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है।
1: अस्पताल की स्थिति इतनी बदतर है और बहुत ही कुव्यवस्था है। निर्बाध रूप से बिजली देने की बात झारखंड सरकार की थी, लेकिन आज की स्थिति है 6 घंटा 8 घंटा लोगों को बहुत ही मुश्किल से ये बिजली भी मिल पा रही है। और भ्रष्टाचार के वजह से नल जल योजना, जो इतनी महत्वाकांक्षी योजना, आज आम लोगों को पानी की किल्लत हो रही है। आने वाले समय में निश्चित रूप से इस सरकार का जाना तय है।
0: जनगणना 2027 के तहत रांची जिले में आज विशेष सेल्फ एन्यूमरेशन ड्राइव चलाया जाएगा। उपायुक्त सह प्रधान जनगणना पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने लोगों से दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक डिजिटल माध्यम से स्वगणना में भाग लेने की अपील की है। प्रशासन ने बताया कि नागरिक se.census.gov.in पोर्टल पर जाकर स्वयं अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। जनगणना से जुड़ी सभी सूचनाएं जनगणना अधिनियम 1948 के तहत पूरी तरह गोपनीय रखी जाएंगी। साहिबगंज जिले में समाहरणालय परिसर में सेंसस 2027 अंतर्गत आम जनों को जागरूक करने के उद्देश्य से एलईडी प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह जागरूकता वाहन जिले के विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों का प्रचार प्रसार करेगा तथा नागरिकों को स्वगणना के प्रति प्रेरित करेगा। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिले के विभिन्न निजी विद्यालयों के प्राचार्यों और प्रतिनिधियों के साथ शुल्क निर्धारण एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत वंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन को लेकर बैठक की। इसमें झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत जिला स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
2: पिछले बैठक में हम लोगों ने सभी स्कूल्स के साथ जो किए थे उसके नेक्स्ट फॉलो अप मीटिंग थी और 149 सीबीएसई आईसीएसई स्कूल्स में से 129 स्कूल्स ने अपना जो फीस मैनेजमेंट कमिटी गठित किया है और पीटीए भी गठित किया और पूरा अपलोड भी किया है। 20 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किए हैं और उनको सूचना भी नहीं दी है। जिला प्रशासन आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करेगी।
0: रांची व्यवहार न्यायालय परिसर में पलाश आजीविका कैफे का उद्घाटन झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश एवं झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने किया। नगड़ी प्रखंड की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इस कैफे का संचालन करेंगी, जहां पारंपरिक व्यंजनों सहित विभिन्न खाद्य पदार्थ उपलब्ध होंगे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।

0: खूंटी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिलिंगा जंगल में छापेमारी कर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि इनके पास से 2 देशी कट्टा और गोलियां बरामद की गई हैं तथा वे संगठन के लिए लेवी वसूली में सहयोग करते थे।
1: 2 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है और इनके पास से हम लोग को 2 देसी कट्टे भी बरामद हुए हैं और जो बाकी लोग भी इसमें संलिप्त थे उनको भी हम लोग जल्द ही पकड़ेंगे। और इन लोगों में से जो एक व्यक्ति है पुलन पोंगाड़ी और एक व्यक्ति का नाम है इसमें राजू स्वामी, जो पुलन पोंगाड़ी है इसके ऊपर पास्ट में भी आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं।
0: धनपाद के झरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि सभी आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इनके अन्य साथियों की तलाश में छापेमारी जारी है।
2: बरवड्डा के एक व्यापारी को नराद हमकाकी इनसे पैसे वसूलने की तैयारी थी। जब इसके तय तक पहुंचा गया तब पाया गया कि 4 अभियुक्त थे जो प्रिंस खान और फिर मेजर वगैरह का नाम लेके गलत रूप से रंगदारी वसूल रहे थे। इसमें से एक जयकांत शिकरे केंदुआ का रहने वाला है और नामी गिरावे डकैत था पहले और अभी भी इस टाइप चोरी चकारी वाले केसेस में संलिप्त रहता है।
0: देवघर जिले में पुलिस ने सारठ और खागा थाना क्षेत्र के गांवों में साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया है। पुलिस ने साइबर अपराधियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई और संगठित अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की चेतावनी दी, साथ ही कहा कि संरक्षण देने वालों को भी चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। अभियान में टोल फ्री नंबर 1930 के प्रचार पर जोर दिया गया है। आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय महिला वॉलीबॉल खिलाड़ियों के लिए ओपन सिलेक्शन ट्रायल और तैयारी शिविर का आयोजन KIIT भुवनेश्वर में किया जा रहा है। 22 मई से काठमांडू नेपाल में आयोजित होने वाली कावा महिला चैंपियनशिप 2026 के लिए चयन परीक्षण कैंपस भुवनेश्वर में 13 और 14 मई को आयोजित होगा। जमशेदपुर एफसी को जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बेंगलुरु एफसी के खिलाफ 1-0 से हार का सामना करना पड़ा। बेंगलुरु के लिए मैच का एकमात्र गोल रयान विलियम्स ने 38वें मिनट में किया। मौसम विभाग ने रांची खूंटी समेत राज्य के कई जिलों में आज बारिश, तेज हवाएं चलने, गरज वर्जन और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 16 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी अखबारों ने बंगाल में नई सरकार के गठन की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान लिखता है, शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ। दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, तमिलनाडु में विजय पथ, नतीजे के 5 दिन बाद बहुमत, शपथ ग्रहण आज। प्रभात खबर के शब्द हैं, विश्वविद्यालयों के वित्त विभाग में 3 साल से कार्यरत कर्मियों को बदलने का आदेश। दैनिक जागरण की सुर्खी है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। समय पर वेतन का भुगतान अनिवार्य, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रावधान शामिल। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, राज्य सरकार विकास के हर मोर्चे पर विफल साबित, स्वास्थ्य, बिजली, पानी समेत मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदेश में लोग परेशान। रांची में आज चलाया जाएगा विशेष स्वगणना अभियान, प्रशासन ने लोगों से डिजिटल माध्यम से भाग लेने की अपील। ऑनलाइन पोर्टल से स्वयं दर्ज कर सकते हैं जानकारी। खूंटी के जिलिंगा जंगल में पीएलएफआई के 2 उग्रवादी गिरफ्तार। धनबाद में हथियारों के साथ दबोचे गए 4 अपराधी। और मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज बारिश, तेज हवाएं चलने, गर्जन वज्रपात को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माई गॉड पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें, और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

अभी आप सुन रहे थे विश्वनाथ महतो और साथियों से आज का कार्यक्रम माटी की महक। दोस्तों, आज महिला दिवस है, माँ की महिमा, और मातृ दिवस पर पेश है आज का विशेष अभिविधा कार्यक्रम।

सभी श्रोताओं को बसंती का जोहार नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम विविधा में। उम्मीद करते हैं इस समय आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। श्रोताओं, आज मदर्स डे है। सभी माताओं को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, माँ प्यार त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति होती है। हर व्यक्ति के जीवन में माँ सभी के लिए अनमोल होती है। वह माँ ही है जो अपने सभी बच्चों के लिए निस्वार्थ भाव से अपना आंचल फैलाती है। इसलिए दुनिया भर में माँ के सम्मान में मदर्स डे यानी मातृत्व दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत एक बेटी ने अपनी माँ को सम्मान देने के लिए की थी। एना जार्विस को मदर्स डे की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपनी माँ के निधन के बाद उनके सम्मान में यह खास दिन मनाने की पहल की। एना चाहती थी कि सभी लोग अपनी माँ के प्यार त्याग को सम्मान दें। इसी सोच ने मदर्स डे का रूप ले लिया, जो आज पूरी दुनिया में एक खास अवसर बन गया। मदर्स डे यह सिर्फ एक त्यौहार नहीं, बल्कि माँ के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है। इस दिन बच्चे अपनी माँ को गिफ्ट देते हैं, कार्ड बनाते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं। यह दिन माँ के त्याग और निस्वार्थ प्रेम को याद करने का मौका देता है। उन्हें खास महसूस कराने का दिन है और उनके योगदान के लिए सभी माओं को धन्यवाद कहने का अवसर भी है। तो फिर से सभी माताओं को एक बार हैप्पी मदर्स डे, मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, इस बातचीत के बाद आइए अब हम सुनते हैं ये जरूरी संदेश।

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: तीन नाले बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मरन बेटा क्रांति बेसरा आले वगे नहर में ना बले नवा नुकन परिस्थिति रे बले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना जंगल गया है तो कहाँ बना है वो लोग आउका वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम्हें ठीक हुए है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आए ने हमरे घरे बहुत दुख के बात होते कम बात हो जाए
5: तुम लोग बुरन सिंह तमसाए मानता तमसाए भूपा ऐसे ना करना ऐसे दुकुरा में ना ना यापा में रियल तपा में रियल वाह बेटा मिटा
6: अन्यां तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम दूर कोड़ा अन्यां हम दो कोदमरी कोड़ा दो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा दोनों में उड़ी ने बागिया तो किन्हें दोनों से यार की कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तमा दुर्गम कोई यहाँ तो जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको नहीं मिया
7: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लिंग सी जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिठा हुरा इनका अली आया नु तुम ते ना मिल आप ही लेते ना।
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण

निःशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुछ जरूरी संदेश। इन संदेशों के बाद आइए अब हम सुनते हैं ये भेंट वार्ता।

0: वहीं चलते हैं ग्राम को। किसान भाइयों, हम आपको लिए चलते हैं ग्राम कोपे, जहां हम मिलेंगे प्रगतिशील महिला किसान से, जो हमेशा मौसम आधारित सीजनल सब्जियों की खेती करती हैं। आज हमें जानकारी देंगी कि मई जून में किन किन सब्जियों की खेती करनी चाहिए, जिससे कि हम अपनी फसलों से अधिक मुनाफा ले सके। पिंकी जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। जोहार।
1: जोहार
0: पिंकी जी, हर मौसम का अपना अपना महत्व होता है और हम मौसम के अनुसार खेती भी करते हैं
1: जी।
0: हर एक मौसम में तरह तरह के सब्जियों का स्वाद भी लेते रहते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ पोषक तत्वों से भरपूर भी होते हैं। तो पिंकी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मई जून में किन किन सब्जियों को उगाना चाहिए, जिससे कि हम बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें
1: जी। गर्मियों में ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी सब्जियां हैं जो हम लोग इसे उगा सकते हैं। इसमें है भिंडी, करेला, कद्दू, तुराई, बैंगन है, टमाटर है और झींगा है, और लत्तर वाली सब्जियों के साथ साथ कुछ पत्तेदार सब्जियां भी हैं, जैसे कि लाल भाजी हुआ, हरी भाजी या पोई की साग, जो खाने के साथ साथ ये काफ़ी स्वादिष्ट तो होते ही हैं और काफ़ी पोषक तत्वों से भी ये भरपूर होते हैं
0: जी
1: जी। और ये गर्मियों में जो है हमारे शरीर में जो पानी की कमी होती है, उस कमियों को भी ये सब्जियाँ पूरा करती हैं जी। तो गर्मियों में देखते हैं कि बाज़ारों में सब्जियों की काफ़ी कमी रहती है, क्योंकि अधिकतर हिस्सों में पानी की कमी के कारण

0: कई लोग बगान नहीं कर पाते हैं सुविधा ना होने के कारण
1: जी।
0: और जिस तरफ अगर पानी की सुविधाएं अच्छी हो तो उधर के किसान भाई बहन जो है इसे लगा सकते हैं या लगाते भी हैं। तो गर्मियों में अगर हम गर्मी की सब्जियां अगर लगाते हैं और इसे सही समय पर लगा करके सही समय पर अगर हम तुड़ाई करते हैं तो किसान भाई बहन जो है अच्छे लाभ ले सकते हैं
1: जी।
0: इसे बाजारों में बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: जी हाँ। तो गर्मियों की जितनी भी जो सब्जियां हैं ये तैयार होने में तकरीबन 40 से 45 दिन में अच्छी तरह से तैयार हो जाती हैं और अच्छी फसल मिलती है, अच्छी फसल तैयार हो जाती है और इसे आप बाजार में ले जा करके इसे अच्छे दामों में बेच सकते हैं।
1: जी जी जी
0: जी। तो गर्मियों में ज़्यादातर वैसे ज़्यादा निराई गुड़ाई की आवश्यकता भी नहीं होती क्योंकि गर्मियों में ज्यादातर जो है घास फूस जो है मर जाते हैं।
1: जी जी। धूप की वजह से वो
0: स्वतः ही
1: मर जाते हैं। जी जी।
0: लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छी फसल और अच्छी पौध तैयार करनी हो तो थोड़ी बहुत निराई गुड़ाई तो करनी ही पड़ेगी।
1: जी जी जी।
0: थोड़ी खाद भी आपको डालने पड़ेंगे जिससे आपको अच्छी अच्छी फसल मिले और स्वास्थ्य भी मिले।
1: जी जी जी।
0: गर्मियों में ज्यादातर देखा जाए तो गर्मी वाली सब्जी में कीड़े मकोड़े कम लगने के चांसेस रहते हैं। जी, कम लगने के चांसेस रहते हैं। और साथ साथ आप लतेदार सब्जियों में ककड़ी, खीरा या तरबूज, खरबूज भी लगा सकते हैं।
1: जी जी, जी।
0: जो कि ये खाने के साथ साथ सब्जियों के काम में भी आते हैं।
1: जी जी।
0: और इन्हें बेच करके किसान भाई बहन जो है अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, ले
1: जी,
0: सकते
1: जी,
0: हैं
1: जी।
0: क्योंकि ये बाकी जो सब्जियां हैं वे आप इसे सालों भर भी लगा सकते हैं लेकिन जो है ककड़ी हुआ, तरबूज हुआ आप कुछ महीना लगा सकते हैं।
1: जी जी, जी।
0: खासकर गर्मी में।
1: जी जी
0: जी।
1: और ककड़ी, खीरा, तरबूज इसकी मांग तो गर्मियों में बहुत ज्यादा हो जाती है।
0: होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। ये आप अपने शहरों में, अपने गांव में भी बेच सकते हैं। इससे साथ साथ ये बाहर भी इसकी मांग बहुत ज्यादा होती है।
1: जी।
0: तो अगर आप ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं किसान भाई बहन तो अपने खेतों में इसे लगा करके आप बाहर भी बेच सकते हैं
1: जी,
0: और
1: जी, जी।
0: अपने शहरों गांव में भी इसे बेच सकते हैं
1: जी।
0: और गर्मियों में ज्यादातर देखते हैं ककड़ी, खीरा और जो तरबूज है गांव में भी इसकी मांग बहुत ज्यादा होती है।
1: जी जी जी,
0: जी।
1: जी। क्योंकि ये जो है ना हमारे शरीर के जो पानी
0: पानी की जो कमी होती
1: जी,
0: है
1: जी, जी,
0: उसे वो पूरा होता है।
1: जी जी जी जी जी जी।
0: तो अभी गांव-गांव में भी इसकी मांग बहुत ज्यादा होती है। जी हाँ।
1: तो पिंकी जी, आप जो गर्मियों में जो सब्जी लगाते हैं उनमें आप कौन सा खाद ज्यादा लगाती हैं?
0: खाद जो हम लोग घर पे ही जो तैयार करते हैं जैविक खाद भी बोल सकते हैं उसे, जिसमें होता है गाय का गोबर होता है, सूखी पत्तियां होती है और जो आपके घर में जो पशु पक्षी जो भी हैं उनके जो बीट होते हैं उनको हम लोग जमा करते हैं एक जगह और मिट्टी में हम लोग दफन करते हैं ताकि वो अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए।
1: जी जी।
0: और
1: जी।
0: उसको फिर हम लोग निकाल करके उसको पाउडर बना करके उसे खेतों में या पौधों में लगाते हैं।
1: अच्छा
0: जी।
1: तो आप घर पे ही तैयार खाद का ही इस्तेमाल अधिक
0: हाँ,
1: करती हैं?
0: जी, हाँ।
1: जी, ये तो बहुत अच्छी बात है पिंकी जी, क्योंकि हमें रासायनिक खादों से
0: दूरी
1: बनाए रखना ही हमारे सेहत के लिए अच्छा होगा।
0: रासायनिक खाद से क्या होता है कि आपकी जमीन की मिट्टी भी खराब हो जाती है।
1: जी, जी, जी, जी।
0: आपकी फसल में कमी आ सकती है।
1: जी
0: जी।
1: और हमारी जो मिट्टी की जो
0: उर्वरता जो होती है वो
1: जी, जी,
0: कम हो जाती
1: जी,
0: है।
1: जी,
0: जी हाँ। तो उसमें अगर हम लोग खेतों में कोई भी सब्जी लगाए या कोई भी अगर सब्जी के साथ साथ दूसरे कुछ और भी हम लोग फसल लगाते हैं तो उसमें आपको उतना मुनाफा नहीं हो पाएगा
1: जी, जी,
0: जितना कि आप घर पे तैयार खाद से करते हैं।
1: जी जी
0: जी।
1: और हम घर का खाद ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो भी बने रहेगी और हमारा स्वाद भी बने रहेगा।
0: स्वाद भी बने रहेगा साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि हमारा स्वास्थ्य

0: जी
1: जी स्वास्थ्य वो भी बना रह सकते
0: जी,
1: हैं।
0: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने जी, पिंकी जी,
1: जी।
0: इससे क्योंकि हम अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ा नहीं कर सकते
1: जी,
0: जी। तो
1: और गर्मियों की जो ये फसल आप लगाते हैं तो आप ज्यादातर क्योंकि पानी की कमी भी बहुत होती है तो उसे आप अपने घर के आसपास भी लगा सकते हैं, जिससे आप घरों के जो पानी जमा करते हैं उससे भी उसकी सिंचाई कर सकते हैं
0: जी, जी,
1: और अगर किसान भाई बहन जो अगर अधिक मात्रा में लगाना चाहते हैं या मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ये तालाब के किनारे या नदी के किनारे जैसे उनका जो सुविधा हो सकता है सुविधा अनुसार जगहों में ये खेतों में भी लगा सकते हैं
0: जी।
1: और पहले वाले मौसम की सब्जियों की तरह ही इस सब्जियों को भी लगाया जा सकता है, जैसे पौधे वाले सब्जी में जो भिंडी हुआ फिर आपका बरबट्टी हुआ मिर्चा हुआ बैगन हुआ तो उसी तरह ही हम लोग इसे तैयार करके खेतों में बीज के द्वारा जैसे भिंडी को हम लोग बीज के द्वारा ही समानतः दूरी में खेत तैयार करके लगा सकते हैं, एक सेंटीमीटर या एक मीटर की दूरी में, क्योंकि भिंडी जो है पौधा बड़ा होता है तो उसकी पत्तियां भी बड़ी होती है, इसे दूरी बना करके एक समानता दूरी बना करके इसे लगा सकते हैं। और जो है लत्तेदार सब्जियां होती है ये थोड़े बहुत फैलते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, तो आप इसे अपने बाड़े में झाड़ी जो आप घेरा बनाते हैं जो बाड़ी वाले होते हैं उसके किनारे लगा सकते हैं ताकि वो सहारा लेकर के वहाँ वो जो फसल तैयार हो सके, उसमें बहुत ज्यादा बाड़ी की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ये जमीन पर भी फैल करके फसल तैयार होता है
0: जी। ज्यादातर गर्मियों वाले सब्जी जो लतेदार सब्जी होते हैं
1: जी।
0: तो उनमें बाड़े की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो जमीन में ही फैल जाती है
1: सब खेतों में भी लगा सकती है
0: जी जी जी। तो पिंकी जी,
1: और इस मौसम में हम लोग देखते हैं कि अधिकतर सब्जियां काफी ऊंचे दामों में बिकते हैं, तो आप सुविधा अनुसार अपने जगह के अनुसार आप एक साथ कई तरह की सब्जियां भी लगा सकते हैं, जैसे बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, और कुछ पत्तेदार सब्जियां हो गई जैसे लाल भाजी हुआ, जो पूरी साग हुआ, हरी भाजी, ये छोटे से जगह में भी आप इस बीजों को छिड़क करके वहाँ आप उसके फसल तैयार कर सकती हैं
0: जी,
1: और
0: जी, जी।
1: अपने खाने के साथ साथ इसे बाजारों में जा करके बेच सकते हैं
0: जी।
1: और जो अभी काफी अच्छे दाम भी मिल सकते हैं गर्मी में
0: जी जी जी। अगर कोई भी फसल को अगर हम सही समय पर लगाते हैं तो अच्छे दाम हमें प्राप्त हो सकते हैं
1: जी
0: जी,
1: जी
0: जी। तो पिंकी जी, आपने गर्मियों वाले सब्जी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान इस जानकारी से जरूर लाभान्वित होंगे
1: जी।
0: तो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई बहनों को, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जोहार
1: जोहार।
2: श्रोताओं, अभी आप भेंटवार्ता के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे थे गर्मी वाली सब्जियों की खेती के बारे में, और इस विषय पर जानकारी दे रही थी पिंकी हिंसा। इस जानकारी के बाद आइए अब हम सुनते हैं ये जरूरी संदेश।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे सिलसिले फिल्म के गीत से, जिसे स्वर दिया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। इस गीत के बाद आइए अब हम जानकारी लेते हैं मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना पर। मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना सरकार द्वारा गरीबों और ज़रूरतमंदों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाली एक प्रमुख योजना है। इस योजना के तहत गरीबों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराती है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल परिवारों को दिए जाने वाले रियायती राशन के अतिरिक्त है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों को ही मुफ्त राशन दिया जाता है। यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनके पास राशन कार्ड है। जो राशन कार्ड धारक हैं उन्हीं को ये लाभ प्राप्त होता है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना के बारे में। श्रोताओं, इसी जानकारी के साथ ही आज का हमारा विविधा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बसंती को दीजिए विदा। जोहार, नमस्कार।

शामिल आप सुन रहे थे आज का विविधा कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये चाईवासा केंद्र है, पेशे खिदमत है आज का रसरंजन कार्यक्रम। श्रोताओ, जिनके पास माँ है उनके हिस्से में दुआ है। सूखी राहों के दामन में जैसे सावन की हवा है, माँ की ममता छांव बनकर हर दुख को सह लेती है। बिन बोले ही आँखों से मन की भाषा कह देती है। जिस घर में माँ मुस्काती है वो घर मंदिर लगता है। उसके आंचल की खुशबू से हर कोना जन्नत लगता है।

कार्यक्रम का आगाज हुआ है। फिल्म नाम के इस नगमे से ही आवाज़ पंकज उधास और साथियों की

नमक हलाल। यागेश फिल्म का गीत गुलकारा हैं आशा भोसले।

माता और पिता के रूप में दुनिया में भगवान हैं। और आइए सुनते हैं ये नगमा, फिल्म पीके से, आवाज़ सोनू निगम की, तलाश भगवान की।

निगम सुरों की सुरों के रंग के बाद पेशकश में था फिल्म संगीत का हमारा दूसरा कार्यक्रम।

0: काम करती हैं। लेकिन वर्तमान में तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन पानी को लेकर बहुत क्लियर है, पेड़ को लेकर बहुत क्लियर है। एक पेड़ माँ के नाम, कितना बढ़िया संदेश है। जल जीवन मिशन, स्वच्छता मिशन, तो जब लोगों उन्होंने शुरू किया था तो लोग दुनिया के हंस रहे थे, क्या बात शौचालय कर रहे हैं। लेकिन आज स्टेशन में जाइए, स्वच्छता हो गई है। आप राज्य सरकार, मैं देख रहा हूँ रांची में, मैं आपके रांची में हूँ, रांची शहर में दो नदियां थी, उनको भी थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ की राज्य सरकार भी अच्छा काम कर रही है, वहाँ के जल शक्ति मंत्री जी आए थे, बहुत अच्छी प्रभावी बात कर रहे थे। ये एक का विषय नहीं है, पानी स्टेट का मुद्दा है, लेकिन नदियों की हदों सरहद नहीं होती है। हमको सबको मिलकर के इस दिशा में प्रयास करना होगा।
1: इस कार्यक्रम को सुनने वाले तमाम श्रोताओं से जल संरक्षण को लेकर क्या कुछ अपील करना चाहेंगे?
0: मैं तो पहले तो अपील करता हूँ कि माँ और पिता से बड़ा इस सृष्टि में कोई नहीं है। जो स्वयं गीले में सोती है, सूखे में सुलाती है, भूखे रहकर भोजन देती है, माँ होती है। और पिता, जिसके बैंक में पैसे नहीं जमा किए जाते, पर उसके बैंक से मांगोगे तो तुरंत मिलते हैं। तो अगर आपको पानी बचाना है तो अपनी आंखों का पानी बचाना होगा। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आप अपने दैनिक जीवन के पानी का कम से कम उपयोग करें, कम से कम उपयोग करें। पानी बना नहीं सकते, केवल बचा सकते। ऐसी मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ, कल ना हो देर ना हो। हमारा समाज पानीदार था, पानीदार है, आगे पानीदार रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना।
1: और कुछ अपने अनुभव हमारे तमाम श्रोताओं से शेयर करना चाहें तो?
0: मेरा आग्रह ये है कि पानी के बचाने के लिए, पानी के काम के लिए सरकार के संसाधन की तरफ मत देखें, अपने स्वयं के संसाधनों से एक पेड़ दस पुत्र समान, हमारे शास्त्रों ने कहा है। पानी की प्रार्थना की गई है, हम जल को जगदीश मानकर, जल को जगन्नाथ मानकर, पानी को परमात्मा मानकर, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, इस भावना के साथ काम करें तो मुझे लगता है कि पानी सबका है। ये सामूहिक संपत्ति है, यह तो किसी की नहीं है। पृथ्वी सबकी है, हवा सबकी है, सूर्य सबका है, पानी सबका है। तो सब इसकी सामूहिक हिस्सेदारी से बचाएं, क्योंकि मैं भी पानी पीता हूं, ऐसी भावना के साथ काम करें। हम भी पानी पीते हैं और हमारे भी लोग पानी पिए, ऐसी मेरी भावना के साथ हम काम करेंगे, तभी पानी बचेगा। ऐसी मेरी आपके साथ और आपके माध्यम से युवा पीढ़ी से खासकर प्रार्थना है, जिन्होंने तालाब नहीं देखे, नदियां नहीं देखी, कुएं नहीं देखे, वो तालाब पर जाएं, नदी पर जाएं, कुएं में जाएं, नानी के यहाँ जाएं, नाना के यहाँ जाएं, और गांव की पानी की कहानियों को सुने, पानी की पाठशालाएं आयोजित करें, ऐसा मेरा आपके माध्यम से आग्रह है।
1: उमाशंकर पांडे जी, जल संरक्षण को लेकर आपने हमारे तमाम श्रोताओं से जो जानकारियां, जो अनुभव शेयर किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने पानी जैसे मुद्दे पर मुझे बुलाया, मुझसे बात की। आज जरूरत है ऐसे प्रयासों को आगे बढ़ाने की, और मैं आपका, पूरी आपकी टीम का, और जो आपको श्रोता सुन रहे हैं, सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अब संपन्न होता है बाह्य ध्वनांकन पर आधारित ये कार्यक्रम। संकलन एवं वाचन था हिमांशु शेखर का, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की।
3: अभी आप सुन रहे थे पद्मश्री उमाशंकर पांडे से जल संरक्षण पर बातचीत। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 11:30 होने को है, थोड़ी देर में हम सुनेंगे हमारे श्रोताओं के फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 11:30 हो चुके हैं, आइए अब आपको सुनवाते हैं आपके ही फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। और सबसे पहली फरमाइश हमने ली है कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की। इन्होंने सुनना चाहा है समीर का लिखा गीत सोनू निगम की आवाज में। इस गीत की धुन बनाई है जतिन ललित ने और फिल्म का नाम है संघर्ष।

आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमने ली है दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय की, और इन्होंने सुनना चाहा।

श्रेया घोषाल और उदित नारायण के गाए इस गीत के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं नीरज का लिखा गीत लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत की धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने और फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है चक्रधरपुर ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बासंती, अनु बनमाली, सिद्ध कुमारी और पूजा ने।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्री,
3: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
4: दिमाग चार्ज कर अपना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
4: देखा
3: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
5: अब क्या करोगे?
3: तेरी वैसा है ना,
4: बुद्धू सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
3: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
3: दी, ये देख कैसे।
4: हैप्पी बर्थडे बाय।
3: दिखा, हाँ मेरा फेवरेट कलर
4: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
7: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं श्रोताओं की फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद, और आइए अब सुनते हैं इनकी फरमाइश। ये है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, और इन्होंने सुनना चाहा है मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत परवीन सुल्ताना की आवाज में। इस गीत की धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने और फिल्म का नाम है कुदरत।

अगली फरमाइश हमने ली है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, चैतिक बिरक और मीका बिरक की, और इन्होंने सुनना चाहा है गुलजार का लिखा गीत बेला शिंदे, मधुश्री, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। इस गीत की धुन बनाई है MM किरवानी ने और फिल्म का नाम है पहेली।

जब चलू तो छन छन छन के अंगना रे, जब चूड़िया छनके कंगना छनके छनके कंगना, जग जावे सजना।

अब आज के फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। 12 बज चुके हैं और ये वक्त है बहनों के पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम लेकर आज हमारे साथ हैं मधु और लता।

0: आज का यह खास दिन आपके जीवन में नई रोशनी लाए, भर कर नई ऊर्जा, आपकी सपनों में पंख लगाए।
1: उत्साह आपका आपकी पहचान बने, खुशियों का दीप ऐसे जले कि तूफान भी उसे बुझा न पाए। स्नेहसिल नमस्कार सखियों, मैं लता आप सभी का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में दिल से स्वागत करती हूँ।
0: और मैं मधु, तो स्वीकार कीजिए सखियों मेरा भी प्यार भरा नमस्कार और स्वागत कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। सखियों, दिन के 12 बजे का यह समय सचमुच बहुत व्यस्तता से भरा हुआ होता है ना?
1: लेकिन यह वह समय भी है जब सखियां अपने व्यस्त जीवन में थोड़ा समय चुराकर बैठती हैं हमारे साथ कार्यक्रम के विविध कलेवर को सुनने और समझने के लिए, है ना?
0: बिल्कुल लता, और हमारे कार्यक्रम का यही उद्देश्य भी होता है कि सखियां हमारे संग बैठें, हमें सुने, समय के साथ चले और अपने जीवन में अपने ध्येय को पूरा करते हुए एक सफल व्यक्तित्व बने।
1: बिल्कुल, क्योंकि रास्ते मुश्किल हैं तो क्या हुआ, मंजिलें भी तो खास होंगी। जो थक कर भी चलता रहे, एक दिन मंजिल उसके पास होगी।
0: वाह, क्या खूब कहा तुमने लता। तुम्हारा इशारा मैं समझ चुकी हूँ और मुझे लगता है कि सखियां भी जरूर समझ गई होंगी कि आज की चर्चा में तुम बताना चाह रही हो कि हाँ। बड़ी सफलता एक दिन कैसे खुद ब खुद आकर कदम चूमती है।
1: हाँ सखियो, और तुमने सही कहा मधु, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि छोटी छोटी शुरुआत हम पहले करें। छोटी छोटी शुरुआत से ही एक दिन बड़ी सफलता जरूर मिलती है, है ना?
0: बिल्कुल सही कहा तुमने लता। अक्सर देखा जाता है कि लोग अचानक से बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं और उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, ये सोच कर कि सफलता तुरंत मिल जाए। लेकिन सखियों, अचानक सफलता नहीं मिलती है तो लोग ऐसे में निराश हो उठते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, और जानती हैं आप सखियों, बड़े आंदोलनों और चमत्कारी परिवर्तनों से जीवन की दिशा तय नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों से ही होती है जो नियमित ढंग से किए जाते हैं।
0: बिल्कुल, और सखियों, छोटे छोटे छोटे शुरुआत, जैसे कि कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होना चाहता है तो उसे रोज थोड़े समय के लिए अध्ययन की आदत डालनी होगी, ना कि एक दो दिन में ही ज़्यादा पढ़कर। रोज का छोटा प्रयास ही एक दिन कामयाबी दिलवाता है।
1: हाँ।
0: इसी तरह यदि आपने कोई व्यायाम करने या अपने हुनर को दिखाने की ठानी है तो उसके लिए आप शुरुआत अपने उत्पाद आसपास के लोगों को दिखा कर करिए या बेच कर करिए। जैसे जैसे मांग बढ़े वैसे वैसे सामान का दायरा बिक्री के लिए बढ़ाइए, उसे दुकानों के द्वारा बिकवाइए और मांग बढ़े तो अपने स्वयं की दुकान खोलकर विक्रय आरंभ कर दीजिए।
1: हाँ, और यदि सेहत के लिए कुछ खास करने का सोच रही हैं तो आरंभ कुछ एक व्यायामों से करिए और धीरे धीरे आगे के दिनों में जैसे जैसे सीखती जाएं और उसे बढ़ाएं, सफलता निश्चित ही मिलेगी बहनों।
0: बिल्कुल, कहने का मतलब ये है बहनों कि जिस क्षेत्र में आपने अपना ध्येय सोच रखा है उसे मूर्त रूप दीजिए, साकार कीजिए, उसके लिए कदम बढ़ाइए। शुरुआत छोटे छोटे प्रयासों से कीजिए, क्योंकि कोई भी अचानक बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता जब तक उसकी कोशिश ना करे, इसीलिए छोटी शुरुआत की जरूरत है। पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन स्वर्गीय डॉक्टर कलाम ने कहा था कि सफलता कभी किस्मत से नहीं मिलती, इसके लिए रोज पसीना बहाना पड़ता है, जो आज दर्द सहता है वही कल जीत का जश्न मनाता है।
1: हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने, और यही कारण था कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति की जी की उपलब्धियों को पूरी दुनिया लोहा मानती है।
0: एक उदाहरण यहाँ देना चाहूंगी सखियों को लता, कि मुझे याद आता है बचपन का वो दिन जब माँ दादी वगैरह ऊन कांटा लेकर घर में अपने हाथों से ही स्वेटर बनाया करती थी बुन करके। बड़े ध्यान से तब मैं उसे देखा करती थी कि कैसे कांटे पर एक फंदा से शुरुआत करती थी स्वेटर का और बढ़ाते हुए कई फंदे डालकर धीरे धीरे कुछ ही दिनों में एक बड़ा सा स्वेटर तैयार कर दिया करती थी।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, यदि वे लोग ये सोचती कि जल्दी से एक बड़ा स्वेटर बिना उनके नींव दिए

0: यानी फंदा बनाए तैयार कर दे तो बुनाई भी ना करे करना पड़े, तो ऐसा संभव है क्या? ऐसा नहीं संभव हो सकता। स्वेटर अचानक अपने से बड़ा सा नहीं बन सकता था, उनकी छोटी सी कोशिश ही एक दिन अपनी रंगत दिखाती और उतना बड़ा रंग बिरंगा खूबसूरत स्वेटर तैयार हो जाता था।
1: बिल्कुल लता, एकदम सही कह रही हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कवि पंडित सोहनलाल द्विवेदी की एक रचना की चंद पंक्तियां याद आ रही है मुझे कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए सखियो करिए छोटी छोटी कोशिशें, मिलेगी बड़ी सफलता एक दिन, बस रखिए खुद पर भरोसा, जारी रखिए लगातार नियमित मेहनत या अभ्यास और संजो कर रखिए विजयी होने का जुनून।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: दीदी, नौकरी लग गई।
4: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
3: हाँ दी, नया मोबाइल।
4: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
3: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
4: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
3: पर दीप,
4: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
3: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
4: अच्छा।
5: RBI कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: तो बहनों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और अब गृहलक्ष्मी में हम आगे बढ़ते हैं और मधु बताएंगे कि आगे हम कहाँ जा रहे हैं।
8: अब सखियों को सुनवाते हैं रोज की तरह एक भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार हैं अनीता जायसवाल, इनसे बातचीत की है रेडियो सखी लता ने और आज का विषय है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, आज की जिम्मेदारी, कल का भविष्य। आइए सुनते हैं सखियों।
7: प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, आज की जिम्मेदारी, कल का भविष्य केवल एक विषय नहीं बल्कि मानव जीवन के अस्तित्व से जुड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। जल, वायु, वन, भूमि और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन की आधारशिला है, लेकिन शहरीकरण और संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण प्रकृति का संतुलन लगातार बिगड़ रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, आज की जिम्मेदारी, कल का भविष्य विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं और इसके लिए आज हमारे बीच है समाज सेविका अनीता जायसवाल जी, जो लंबे समय से सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हैं और बतौर एक समाज सेविका समाज में अपनी योगदान दे रही हैं। अनीता जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
9: धन्यवाद
7: जी। अनीता जी, जैसे कि आज हम बात करने जा रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में, जो कि हमारी आज की जिम्मेदारी है और कल का भविष्य भी, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या है और हमारे जीवन में इनका क्या महत्व है।
9: ऐसा है लता जी कि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे जल, वायु, मिट्टी, जंगल, खनिज और सूर्य की ऊर्जा। ये हमारे जीवन का आधार है। भोजन, पानी, घर, कपड़े, ऊर्जा और उद्योग सब कुछ प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। इसके बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं है लता जी।
7: वाह, बहुत खूब। मैम, मैम आज के समय में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों बढ़ गई है?
9: इसलिए पड़ रही है कि जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण,

0: अत्यधिक उपभोग के कारण प्राकृतिक संसाधन बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। यदि हम इसका सही तरीके से संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को पानी, स्वच्छ हवा और अन्य आवश्यक संसाधनों की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए संसाधनों का संतुलित और जिम्मेदार उपयोग बेहद जरूरी हो गया है।
1: ये तो सही कहा मैम आपने। अगर हम अभी से ही इसका संतुलित व्यवहार न करें तो आगे बहुत परेशानी में पड़ सकते हैं।
0: लता जी
1: जी
0: बिल्कुल सही है
1: जी। मैम, जल, जंगल और जमीन के अंधाधुंध दोहन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?
0: ऐसा है लता जी, ये सवाल ने आपने बहुत अच्छा पूछा है हमसे। अत्यधिक दोहन के कारण हमारा जल स्तर घट रहा है, जंगलों की कटाई से जैव विविधता खत्म हो रही है और भूमि बंजर होती जा रही है। इससे जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, प्रदूषण, तापमान में वृद्धि जैसी अनेक समस्याएं बढ़ रही है। पर्यावरण को संतुलित रखने और बिगाड़ने में मानव और पशु पक्षियों का जीवन भी इससे प्रभावित हो रहा है।
1: जी मैम, बिल्कुल बहुत प्रभावित हो रहा है। और ऐसे में जरूरत है कि हम अपना जो है, जैसा कि आपने पहले ही कहा कि संतुलित व्यवहार हमें करना। मैम, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में आम नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है?
0: देखिए लता जी, हम आम नागरिक जो है अपनी छोटी छोटी आदतों से आदतों को बदल के, जैसे पानी की बर्बादी को रोकना, हम जगह जगह पर पेड़ पौधे लगाएं, बिजली जैसे इस रूम से उस रूम निकलते हैं तो स्विच ऑफ करें, प्लास्टिक का बहुत कम प्रयोग करें क्योंकि प्लास्टिक गलती नहीं है
1: जी।
0: जल संरक्षण के लिए वर्षा का संरक्षण होना, जो बरसात के समय जल संचयन करना बहुत जरूरी होता है, वो अलग से हमें जैसे सोखता टाइप का कुछ बनाना चाहिए
1: जी।
0: नलों की मरम्मत, जो हमेशा नल खराब होते हैं जिससे टप टप पानी चूती रहती है, वो सब को हमें ठीक करना होगा और जरूरत के अनुसार ही हमें पानी का उपयोग करना होगा। अगर हम समाज में जल बचाने के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो आगे हम अपने भविष्य को क्या जवाब देंगे? इसके लिए तो सबसे पहले हमको सुधरना होगा, हमको जल बचाने के प्रति जागरूक होना होगा, तभी हम समाज को ही कर सकेंगे।
1: वाह, बहुत खूब मैम। जल संरक्षण के साथ ही आपने बताया कि हमें किस तरह से जो है भावी पीढ़ी के लिए हमें भी उनको अपना जवाब देना है, तो ये तमाम कदम उठाए जा सकते हैं। बहुत खूब उत्तर दिया मैम आपने। मैम, ऊर्जा संरक्षण के लिए लोगों को किन आदतों को अपनाना चाहिए?
0: देखिए, ऊर्जा संरक्षण के लिए बिजली के उपकरणों को जरूरत से ज्यादा बंद रखना होगा, एलईडी बल्ब का उपयोग करना होगा और सार्वजनिक परिवहन को अपनाना होगा
1: जी।
0: जैसे ज्यादा जो नगर निगम की बसें होती हैं वो, और रिक्शा का उपयोग करना चाहिए, सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे छोटी छोटी बचत करके ही ना हम बहुत ज्यादा ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं लता जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और बातों बातों में ये बहुत आवश्यक है मैम कि हम छोटी छोटी बचत से ऊर्जा के, बिल्कुल आपने सही कहा, हम बड़ी बचत कर सकते हैं, क्योंकि हमें भावी पीढ़ी के लिए भी अभी से सोचना बहुत जरूरी है। नहीं तो
0: एकदम बिल्कुल
1: दिनों में ये बहुत बड़ी चिंतनीय विषय तो बन ही चुका है, नहीं तो बहुत मुसीबत में आगे की पीढ़ी पड़ जाएगी। बहुत खूब जवाब आपने दिया मैम। हमारी बहनें आपको सुन रही हैं और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों से बहुत प्रभावित हो रही होंगी हमारी।
0: एकदम एकदम
1: मैम, अगला सवाल मैं आपसे यही मेरा है कि प्लास्टिक प्रदूषण प्राकृतिक संसाधनों को किस प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या
0: देखिए, प्लास्टिक की मिट्टी जो होती है सबसे पहले हमारे जल को प्रदूषित करती है क्योंकि प्लास्टिक मिट्टी आसानी से नष्ट नहीं होता
1: जी।
0: वो फिर नदी में जाएगी, उसके बाद समुद्र में जाएगी, फिर जमीन जाएगी, जिसके कारण जमीन की जो उपजाऊ जमीन होती है उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है।

0: प्लास्टिक खाने से हमारे जो पशु पक्षियों अचानक देखते होंगे कि ढेर सारी पक्षी मर गए, वो सब प्लास्टिक खाने से ही होता है। तो ये मानव के साथ साथ जानवरों पर भी इसका बहुत खराब प्रभाव पड़ता है।
1: ये तो बहुत गंभीर बात आपने बताया कि कई बार होता है जब हम चिड़ियों को देखते हैं तो हमारा ध्यान ही नहीं इस विषय पर जाता है कि कहीं ये हमारे गलती का तो शिकार नहीं हो गए।
0: सही बात है, बहुत हमारी गलती के शिकार वो हो रहे हैं।
1: बिल्कुल मैम, बहुत सचेत रहना होगा और हम कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम प्लास्टिक का हम यूज करें और कोशिश करें कि हम इसका उपयोग ना ही करें। बहुत खूब मैम, हम यह भी जानना चाहेंगे आपसे कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता कैसे बढ़ाई जा सकती है।
0: देखिए, छोटी छोटी जैसे समाज में, स्कूलों में, कॉलेजों में अभियान चला के वृक्षारोपण करके, जैसे हम लोग क्लब के द्वारा करते हैं, बार बार महीने में कम से कम एक बार वृक्षारोपण तो जरूर करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पर्यावरण की गुणवत्ता को बताना होगा, उसके महत्व को बताना होगा। बच्चों युवाओं से ही शुरुआत किया जा सकता है ताकि वो प्रकृति के प्रति जिम्मेवारी अपना समझे। अगर हम आज उन्हें नहीं समझाएंगे तो फिर हमारी एक जिम्मेवारी बनती है उन्हें सिखाना।
1: बहुत खूब मैम, और हम आशा करते हैं कि हमारी बहनें इस जिम्मेवारी को बखूबी समझेंगी और घर से इसकी शुरुआत हो, हमारे बच्चों से, हमारे युवाओं से इसकी शुरुआत हो, ताकि हम जितना ज्यादा इस विषय पर जागरूकता फैलाएंगी उतना ही हम पर्यावरण के करीब आएंगे। जी मैम, आपने हमारे तमाम सवालों का बहुत खूबसूरती से जवाब दिया। हम चाहेंगे कि चलते चलते आप हमारी बहनों से कुछ कहें, हमारी बहनों को संदेश दें।
0: मैं हमारी सभी बहनों से यही कहना चाहूंगी कि वे पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। घर और समाज में जल, ऊर्जा और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाएं। अपनी छोटी छोटी पहल से आने वाले भविष्य को हम सुंदर बना सकते हैं, साथ ही हमको अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ाना होगा। अगर हम अपने आप में आत्मविश्वास नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा समाज और देश के प्रति महिलाओं की भूमिका बहुत बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए हमें चाहिए कि साथ में सारी महिलाओं को कि देश के प्रति, समाज के प्रति हम अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेवारियों को समझें और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।
1: वाह, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत संदेश मैम। और हम महिलाओं को चाहिए कि किस तरह से हम पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, इस बात को समझें और अपना भी योगदान दें। मैम, आज आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ी, आपने हमारी बहनों से इतनी अच्छी, इतनी अहम बातें साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद लता जी।
2: अभी आपने सुना सखियों भेंट वार्ता। आज की मेहमान थी अनीता जायसवाल, इनसे बातचीत की थी लता ने, और आज का विषय था प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, आज की जिम्मेदारी, कल का भविष्य। अब लता, सखियों को अब मनोरंजन भी करवा दिया जाए क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल, अब वक्त हो चला है बहनों को खूबसूरत से गीत की ओर ले जाने के लिए। तो चलो बहनों के साथ मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: अपने अब सखियों को एक महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी हम लोग दे देते हैं, क्यों सही रहेगा ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल मधु, बिल्कुल। आजकल बदलते मौसम में कभी धूप तेज निकल जा रही है तो कभी बारिश होने लग रही है, ऐसे में हम सब पानी पीने के प्रति लापरवाही बरतने लगते हैं, है ना, क्योंकि तब प्यास तेज लगना बंद हो जाती है। ऐसे में शरीर में जल की कमी होने की आशंका रहती है बहनों, तो ख्याल रहे इन दिनों।
0: बिल्कुल सही कह रही हो लता। दरअसल हमारे शरीर का लगभग 2/3 भाग पानी से बना होता है सखियों। पानी ही हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और भोजन पचाने में मदद भी करता है, लेकिन कभी कभी लापरवाही या अन्य कारणों से इसकी मात्रा शरीर में कम हो जाती है तो शरीर को बहुत हानि पहुंचता है।
1: तो आइए आपको बता दें हैं सखियों कि वो कौन से मुख्य कारण हो सकते हैं जिससे शरीर में जल की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो सकता है। तेज गर्मी में अधिक देर तक रहते हुए पानी पर्याप्त मात्रा में ना पीना, बहुत अधिक पसीना का शरीर से निकलना, उल्टी दस्त होना, बुखार आना, शारीरिक श्रम अधिक करना, इसके अलावा छोटे बच्चों और बुजुर्गों को यह रोग जो है वो जल्दी लगने की संभावना होती है। इन्हीं तमाम कारणों से जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाता है।
0: अब बात करते हैं सखियों डिहाइड्रेशन के लक्षणों की, तो आपको बता दे सखियों कि पानी की कमी शरीर में होने पर उस व्यक्ति को प्यास बार बार लगने लगती है, मुंह गला सूखने लगता है, होंठ फटने लगते हैं, शरीर में बहुत कमजोरी महसूस होती है और चक्कर भी आने लगता है।
1: और डिहाइड्रेशन ज्यादा हो जाने पर जो हमारा यूरिनल का जो प्रॉब्लम है वो भी समस्या जो बढ़ जाती है और रंग भी पीला हो जाता है, कई बार दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती है बहनों, बेचैनी, भ्रम, ये सब भी चीजें आने लगती है। लेकिन इसके लिए आपको चिकित्सा के पास जरूर जाना चाहिए, हमारी तो यही सलाह होगी, क्यों मधु?
0: बिल्कुल। और नींबू पानी, छाछ, लस्सी, फलों का रस, तरबूज, खरबूजा इत्यादि भी सेवन करना चाहिए।
1: मधु समय हो चला है बहनों से, वक्त अब हो चला है विदा लेने का, तो बहनों आपको बता दें कि आज के हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति नूतन प्रसाद की थी, तो अपनी सखी लता
0: और मधु को दीजिए आज्ञा,
1: नमस्कार।
2: गृह लक्ष्मी।
3: अभी आप सुन रहे थे बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर और 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं आंचलिक लोकगीतों का कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मगही लोकगीत। कलाकार हैं सिसोदिनी सिंह और साथी।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 12:45 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं खड़िया लोकगीत। कलाकार हैं इग्नासियस किरकिट्टा और साथी।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को है, आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं जहां से आप सुन सकेंगे समाचार। समाचार हम क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सुनेंगे।

0: समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: श्री मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: कौन से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। तमिलगा वेत्री कड़गम

के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटक तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है।
1: In Tamil Nadu, the founder of Tamilaga Vetri Kadagam or TVK, C. Joseph Vijay, was sworn in as the Chief Minister this morning. State Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administered the oath of office and secrecy to Mr. Vijay at the swearing-in ceremony held at Nehru Indoor Stadium. Along with him, nine ministers were also sworn in. Rahul Gandhi and several personalities from the Tamil film industry were present on the occasion. Mr. Vijay created history as his party emerged as the single largest party on debut, and he became the first Chief Minister of the state since 1967, who does not come either from DMK or All India Anna DMK. Mr. Vijay, with the backing of Congress, CPI, CPIM, VCK and IUML, secured the support of 120 MLAs elect in the 234-member House. According to a Lok Bhavan press release, the Governor has directed Mr. Vijay to seek a vote of confidence in the Assembly on or before Wednesday. Prime Minister Modi has congratulated C. Joseph Vijay. In a social media post, Mr. Modi said, "The central government will keep working with the Tamil Nadu government to improve the lives of the people." He expressed his best wishes for Mr. Vijay's tenure ahead. Senior leader Dr. Himanta Biswa Sarma has been elected as the leader of the BJP Legislature Party as well as the NDA Legislature Party. In the BJP Legislature Party meeting held in Guwahati this morning, a total of 8 BJP MLAs proposed the name of Dr. Sarma as the leader of the Legislature Party. In IPL cricket, the Super Sunday doubleheader will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Chennai Super Kings will lock horns with Lucknow Super Giants in Chennai at 3:30 p.m. In another clash, Royal Challengers Bengaluru will take on Mumbai Indians in Raipur at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
2: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 होने को है, ये वक्त है प्रादेशिक समाचार का।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक महत्व को किया याद, कहा शौर्य और सामर्थ्य की यही विरासत देश की सबसे बड़ी ताकत। पीएम कुसुम हरित ऊर्जा योजना से आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर किसान, चतरा जिला योजना का लाभ लेने में बना अग्रणी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मदर्स डे पर सभी माताओं को किया नमन, दी हार्दिक शुभकामनाएं, कहा स्नेह समर्पण और शक्ति सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। आकाशीय बिजली गिरने की अलग अलग घटना में 5 लोगों की मौत, 2 घायल, आज भी राज्य के कई हिस्सों में आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने जीता स्वर्ण पदक, चीन को 5-4 से हराया, टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहित शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक महत्व को याद करते हुए एक प्रेरणादायक संदेश दिया है। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ऐतिहासिक तारीख है। श्री मोदी ने कहा कि साहस और शौर्य की यह विरासत हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
0: 10 मई की ऐतिहासिक तारीख 1857 में आज के ही दिन स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी फूटी थी। समय के साथ ये चिंगारी एक बड़ी ज्वाला में बदल गई, जिसने गुलामी की बेड़ियों को जलाकर भस्म कर दिया। शौर्य और सामर्थ्य की विरासत ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।
2: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास में बड़ी सफलता हासिल की।
3: एक रिपोर्ट।

0: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम योजना चतरा जिले में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ जिले के किसानों के लिए समृद्धि का रास्ता बन चुकी है। सिमरिया अनुमंडल के इचाक पंचायत के नवाटाड़ गांव के सभी किसान इस योजना का लाभ सफलतापूर्वक उठा रहे हैं। किसान मित्र संजय कुमार ने बताया कि पीएम कुसुम योजना से किसानों ने डीजल और पेट्रोल पर निर्भर रहना छोड़ दिया है। अब किसान निर्भीक होकर खेती करते हैं।
2: प्रधानमंत्री कुसुम योजना किसानों के लिए अति आवश्यक योजना है। इस योजना से किसान खेती में तरक्की किया है, अच्छे से खेती कर पा रहा है, पानी की सुविधा भी अच्छी हो जा रही है और न तो डीजल का खपत है न पेट्रोल का खपत है और मोटर भी लगाने की जरूरी नहीं है, मोटर कंपनी लगा के देती है, खेती अच्छे ढंग से हो रहा है।
1: जमशेदपुर में विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर अनुराग फाउंडेशन द्वारा जागरूकता एवं सामुदायिक समर्थन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम की थीम थी अब छिपे नहीं, जिसके तहत अनपहचाने मरीजों की पहचान और पीड़ित परिवारों को सहयोग देने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे, अभिभावक, चिकित्सक और समाज सेवी शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल थैलेसीमिया पीड़ित बच्ची ने इस बीमारी को रोकने के लिए समय पर जांच और जागरूकता की आवश्यकता बताई।
3: आज के समाज को यही कहना चाहूंगी कि प्लीज एक बार शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट करवा ले ताकि आगे इस तरह का बच्चा ना हो, क्योंकि एक बार अगर किसी बच्चे को थैलेसीमिया हो गया तो लाइफ टाइम उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय ब्लड चढ़ाने के लिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट से रखने का। जैसे हमारे अदर बच्चे हैं वैसे हम लोग भी है, वो जो काम कर सकते हैं हम भी वो सारे काम कर सकते हैं, तो प्लीज हमें किसी से तुलना ना करें, हम भी एज अ स्पेशल है।
1: खूंटी गुमला जिले के सीमावर्ती क्षेत्र भालू टोली के पास रनिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध डोडा से लदे एक ट्रक को जब्त किया। हालांकि इस दौरान ट्रक चालक, खलासी और डोडा खरीददार मौके से फरार होने में सफल रहे। फरार तस्करों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मदर्स डे के अवसर पर सभी माताओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपने संदेश में लिखा है कि मां केवल एक शब्द नहीं बल्कि प्रेम, त्याग, संस्कार और असीम ममता का स्वरूप है। एक मां ही परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रथम शिक्षिका होती है, जिनके स्नेह और मार्गदर्शन से पीढ़ियों का निर्माण होता है। केंद्रीय मंत्री ने सभी माताओं के स्वस्थ, सुखी एवं दीर्घायु होने की कामना करते हुए कहा कि आपका स्नेह, समर्पण और शक्ति हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मातृत्व भाव की मिसाल पेश करते हुए कोडरमा के मॉडर्न पब्लिक स्कूल की निदेशक संगीता शर्मा ने सड़क हादसे में अपने बेटे को खोने की पीड़ा को समाज सेवा और शिक्षा की मिसाल में बदल दिया है। उनका कहना है कि विद्यालय के हर बच्चे में उन्हें अपना बेटा नजर आता है, इसलिए बच्चों को शिक्षित और संस्कारी के साथ साथ बेहतर इंसान बनाने में जुटी हैं। उन्होंने बच्चों को जीवन रक्षा में हेलमेट के महत्व को लेकर जागरूक किया।
4: कोई भी बच्चा अगर मोटरसाइकिल बहुत तेज चलाते हुए दिख जाता है तो मैं स्कूल में ही कान पकड़ के एक चपत लगा दे, और पता नहीं क्यों मेरा एक चपत लगाया।

0: बुरा भी नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता कि मैं उन लोगों को यही कहती हूँ कि एक मैंने खो दिया है, दूसरा मैं खोना नहीं चाहती। इसलिए जब भी तुम लोग बाइक चलाओ तो तरीके से चलाओ, इतनी तेज ना चलाओ कि कोई दुर्घटना घट जाए।
1: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,40,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,64,000 रुपये प्रति किलो है। राज्य में वज्रपात की अलग अलग घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। कोडरमा जिले के सतगांवा प्रखंड के मंडरोडीह गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र में भी वज्रपात की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। चतरा जिले के टंडवा के बड़गांव में भी एक किशोरी की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश और कहीं कहीं वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। हजारीबाग के बरकठा प्रखंड के ग्राम गोरहर में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। पहली घटना में पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे गिर गई, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी घटना में 4 वाहनों की टक्कर से हादसा हुआ। हॉकी झारखंड ने राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के अनुरूप संविधान और उपनियमों को अपनाने के लिए 24 मई को विशेष आम सभा की बैठक बुलाई है। यह बैठक मरांगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी रांची में आयोजित होगी, जिसमें संविधान संशोधन और अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 के रोमांचक फाइनल में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहत शामिल थीं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक महत्व को किया याद, कहा शौर्य और सामर्थ्य की यही विरासत देश की सबसे बड़ी ताकत। पीएम कुसुम हरित ऊर्जा योजना से आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर किसान, चतरा जिला योजना का लाभ लेने में बना अग्रणी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मदर्स डे पर सभी माताओं को किया नमन, दी हार्दिक शुभकामनाएं, कहा स्नेह समर्पण और शक्ति सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। आकाशीय बिजली गिरने की अलग अलग घटना में 5 लोगों की मौत, 2 घायल। आज भी राज्य के कई हिस्सों में आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने जीता स्वर्ण पदक, चीन को 5-4 से हराया। टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहत शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त हो चला है उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी का। अनुरंजनी कार्यक्रम हम सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: भाकपा माओवादी के भाइयों और बहनों, सरकार आपके पुनर्वास के लिए लगातार प्रयासरत है। अतः आपसे आग्रह है कि वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करते हुए सही निर्णय लेकर मुख्यधारा में लौट आइए। भयमुक्त जीवन का आनंद अपने परिवार के साथ लीजिए। साथियों, समय रहते विचार कीजिए और मुख्यधारा में लौट आइए। साथियों, आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जल, जंगल, जमीन की रक्षा मात्र हिंसा से ही हो सकती है? इतने सालों की प्रयास के बाद क्या हमारा आदिवासी समाज सुरक्षित हो पाया? आज सैकड़ों

0: पूर्व माओवादी साथी हिंसा को पीछे छोड़कर समाज के बीच एक अत्यंत गरिमापूर्ण और कुशल जीवन बिता रहे हैं। प्रशासन आपकी सुरक्षा और गोपनीयता की 100% गारंटी देता है। हिंसा और कठिनाइयों का जीवन छोड़े और अपनों के पास लौट आए। मुख्यधारा में आने के उपरांत आपको पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यधारा में आने के बाद आपको जेल जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी और आपकी सहायता की जाएगी। मुख्यधारा में आने के बाद आपको सारी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। स्वरोजगार के लिए भी आपको उचित अवसर प्रदान किए जाएंगे। पुनर्वास हेतु कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 9863475217। नंबर एक बार फिर नोट करें 9863475217।
1: उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी में आज हम आपको सुनवा रहे हैं बंदिश। कलाकार हैं अनीता।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 1:45 हो चुके हैं और ये वक्त है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की गाई चंद गजलें। आइए सबसे पहले सुनते हैं सागर सिद्दीकी की लिखी गजल, एहसास के मैखाने में कहां अब फिक्रो नजर की कंदीलें, आलाम की शिद्दत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए, रुदा दे मोहब्बत क्या कहिए। फनकार हैं आशा भोसले।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुगम संगीत, और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की काय गजलें। आइए अब सुनते हैं फैज अहमद फैज की लिखी गजल, यूं सजा चांद कि छलका तेरे अंदाज का रंग।

जुदाइयों के जख्म दर्द जिंदगी ने भर दिए, तुझे भी नींद आ गई, मुझे भी सब्र आ गया, दयारे दिल की रात में चराग सा जला गया। आइए अगली गजल सुनते हैं नासिर काजमी की लिखी हुई, आशा भोसले की आवाज में।

0: सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, 2 बजने को है। आइए एक बार फिर दिल्ली लिए चलते हैं मिडडे न्यूज और दोपहर समाचार के लिए।
1: The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam. Punjab's Industry Minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation.
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है।
1: The Prime Minister also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being.
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो।

0: Playoff qualification today. In the first match of the day, Chennai Super Kings will lock horns with Lucknow Super Giants at the M. Chidambaram Stadium in Chennai at 3:30 p.m. In another clash of the day, Royal Challengers Bengaluru will take on Mumbai Indians at the Shahid Veer Narayan Singh International Stadium in Raipur at 7:30 p.m. Yesterday, Gujarat Titans defeated Rajasthan Royals by 77 runs in Jaipur, chasing a massive target of 230 runs set by Gujarat. The host team Rajasthan got bundled out for just 152 runs in the 17th over. India Meteorological Department has forecast heatwave conditions over Gujarat and Rajasthan till tomorrow. Warm night conditions are likely to persist in places over West Rajasthan during the next 4 to 5 days. IMD further predicted a gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius over northwest India during the next 7 days. The weather agency has also forecast heavy rainfall over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. World Lupus Day is being observed today globally. The day is marked to raise awareness about lupus, which is a complex autoimmune disease in which the immune system mistakenly attacks healthy tissues and organs, causing widespread inflammation and damage to joints, skin, kidneys, heart and lungs. Lupus has no known cure and often put a devastating impact on daily life. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma, unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam, stakes claim to form government. Punjab's Industry Minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया, सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से

0: जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
0: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनम नान तमिलनाडु अरसिन முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரியவருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: ஸ்ரீ விஜய் கே சாத் 9 மந்திரியும் நே பீ சபத் லீ ஹே. இன்மே கே ஜி அருண்ராஜ், ஆதவ் அர்ஜுன், என் ஆனந்த், செல்வி எஸ் கீர்த்தானா ஆர் டாக்டர் டி கே பிரபு ஷாமில் ஹே. இஸ் அவசர் பர் லோக்சபா மே விபக்ஷ் கே நேதா ராகுல் காந்தி ஆர் தமிழ் ஃபில்ம் உத்யோக் கி கை ஹஸ்தியாம் மௌஜூத் தீ. முக்கியமந்திரி ஸ்ரீ ஜோசப் விஜய் நே फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
3: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा

0: स्थित वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
2: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। 1 सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर GST के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने 1 दिन पहले वॉशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडिविन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
3: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर

के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 हो चुके हैं और ये वक्त है फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों के कार्यक्रम जय भारती का। जय भारती कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं प्रसून जोशी का लिखा गीत शंकर महादेवन की आवाज में। इस गीत को संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने और फिल्म का नाम है मणिकर्णिका का।

चमन अपना वतन आंखों से अपनी लुट रहा है।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती। और जय भारती कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में धुरंधर फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने और धुन बनाई है संयतन गुहा और यश सिंह ने।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती। जय भारती कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं लाल सिंह चड्डा फिल्म से अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत। इस गीत की धुन बनाई है प्रीतम ने।

बॉबी जासूस की फिल्म का नाम, और आइए सुनते हैं इस फिल्म से मैं पौन और श्रेया घोषाल को। गीत के बोल लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने और धुन बनाई है शांतनु मोहित्रा ने।

0: मोनाली ठाकुर के गाए इस गीत के साथ ही फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 2:55 होने को है, वक्त हो चला है प्रादेशिक समाचार का। आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें वर्षगांठ समारोह में भी शामिल हुए। उन्होंने परिसर में स्थित ध्यान मंदिर और 9 सेवा प्रकल्पों का लोकार्पण किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसिक रूप से शांत युवाओं से विकसित भारत का निर्माण होगा।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज गोड्डा के मेहरमा प्रखंड अंतर्गत धोरीचक से कुमार डीहा तक पथ सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने बेनीदास भूसका तक बनने वाली सड़क की आधारशिला रखी। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। ग्रामीण विकास मंत्री ने इस दौरान जन समस्याएं भी सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। श्रीमती सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ढांचागत संरचना और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े एक स्टिंग ऑपरेशन को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए डीएसओ सहित विशेष टीम गठित की गई है और आरोप सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत पर काम करती है तथा भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर सी जोसेफ विजय को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने आशा जताई कि उनके नेतृत्व में तमिलनाडु विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित करेगा। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने असम के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति के तहत भाजपा असम में लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज मदर्स डे पर मां की ममता को सभी लोग याद कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा

0: कर कहा कि माँ केवल एक शब्द नहीं बल्कि प्रेम, त्याग, संस्कार और ऐसी ममता का स्वरूप है। एक माँ ही परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रथम शिक्षिका होती है, जिसके स्नेह तथा मार्गदर्शन से पीढ़ियों का निर्माण होता है। केंद्रीय मंत्री ने मदर्स डे पर सभी मतदाताओं को नमन करते हुए शुभकामनाएं दी। खूंटी जिले में लकड़ी तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग के निर्देश पर कल जिले के तपकरा थाना क्षेत्र में लकड़ी तस्करों के खिलाफ चलाए गए छापेमारी अभियान में चालक को लकड़ी लदे वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया है।
1: गश्ती पार्टी के द्वारा उसको जाके जब इंटरसेप्ट किया गया तो उसमें देखा गया कि लकड़ी का अवैध रूप से काफी ज्यादा संख्या में वो काट करके लेके जा रहा था और फिर वहां पे उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई। लकड़ी को जब्त किया गया और जो व्यक्ति इसमें संलिप्त था, जो ड्राइवर के रूप में गाड़ी भी चला रहा था, उसको भी हिरासत में लिया गया।
0: हजारीबाग जिले के बरकट्टा में आज दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक अनियंत्रित मालवाहक वाहन पुलिया के नीचे जा गिरा जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य घटना में गोरहर गांव में चार वाहनों की टक्कर हो गई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए। राज्य में 16 मई तक बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक इस अवधि में राज्य के कई इलाकों में तेज हवाओं के चलने और वज्रपात की भी आशंका है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। फिलहाल सभी जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। आने वाले दिनों में तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 3 बज चुके हैं, कुछ ही पलों में हम सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: ಸ್ವಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: आइए सुनते हैं जावेद अख्तर का लिखा गीत एआर रहमान और श्रीनिवास की आवाजों में. इस गीत की धुन बनाई है एआर रहमान ने और फिल्म का नाम है लगान.

फिल्म संगीत में फिलहाल इतना ही। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 3:10 होने को है। आइए एक बार फिर आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां से आप सुन सकेंगे प्रोग्राम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और हम अब आप तक पहुंचाने जा रहे हैं कुछ फिल्मी तराने। पहला नगमा हमने लिया है फिल्म आपकी कसम से और स्वर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर का।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आप सुन रहे हैं फिल्मी तराने। अगला नगमा है फिल्म काला पत्थर से और स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद।

कुछ कहे सुने मन की भाषा पढ़ लेने की जादूगरी सिर्फ एक माँ ही के पास हो सकती है। माँ तो वो है जो अपने हिस्से की रोटी भी बच्चों में बांट देती है। गम हो या खुशियां, जीवन के हर किस्से में वो साथ देती है। चलती फिरती हुई आंखों से अजा देखी है, चलती फिरती हुई आंखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है।

माँ, वो एहसास जो दर्द में दवा बन जाती है, अंधेरे में रोशनी बन जाती है और हारने पर हौसला। बचपन याद है ना, जब हम गिरने से पहले माँ का हाथ पकड़ लेते थे। जिंदगी की ठोकरों में भी सबसे पहले उसी की याद आती है। कितना अजीब है ना, भले ही हम सारी दुनिया हासिल कर लेना चाहते हों, लेकिन माँ, माँ तो सिर्फ हमें खुश और मुस्कुराना देखना चाहती है। माँ सिर्फ एक माँ की भूमिका नहीं निभाती, बल्कि बचपन में खिलौनों से खेलते वक्त वो आपको हंसाने वाला सबसे बेहतरीन खिलौना बन जाती है। वक्त के साथ शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति और संस्कार सिखाते समय एक शिक्षिका का किरदार निभाती है, और बड़े होने पर माँ ही सबसे अच्छी सहेली बन जाती है। बिना मांगे जहां पूरी हर मन्नत होती है, बिना मांगे जहां पूरी हर मन्नत होती है, माँ के कदमों में ही तो वो जन्नत होती है।

माँ का एहसास, माँ का स्पर्श, माँ की बातें, माँ की आवाज हर पल हर क्षण हमारे साथ रहती है। जब हम छोटे थे तो कभी कभी लगता था माँ सिर्फ रसोई में रहती है, कभी टिफिन में, कभी स्कूल बैग में, कभी माथे पर हाथ फेरती हुई। लेकिन बड़े होने पर समझ आया कि माँ तो कहीं जाती ही नहीं, वो रहती है हमारी बातों में, हमारी आदतों में, हमारी फिक्र में, हमारी मुस्कुराहटों में, और उसकी परछाई तो कभी हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। किताबों से निकलकर तितलियां गजलें सुनाती हैं, किताबों से निकलकर तितलियां गजलें सुनाती हैं, टिफिन रखती है मेरी माँ तो बस्ता मुस्कुराता है।

सचमुच ये भी माँ का एक रूप है। वैसे तो हमारी भारतीय परंपरा में हमारा हर दिन माँ से शुरू होकर माँ पर ही खत्म होता है। हमारी दुनिया, हमारी खुशियां, हमारी सांसें, सब कुछ माँ ही तो है। वो माँ जो अपनी सोती जागती आंखों में हर वक्त अपने बच्चों के सपने लिए उनकी सलामती और तरक्की की दुआएं मांगती नहीं थकती। मुझे मालूम है माँ की दुआएं साथ चलती हैं, मुझे मालूम है माँ की दुआएं साथ चलती हैं। सफर की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है।

अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी की सारी खुशियां न्यौछावर कर देने वाली माँ के लिए सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन हर पल उनकी खुशियों का ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि इस धरती पर ईश्वर कहीं है तो वो माँ की सूरत में ही तो है। माँ ही है जो अपने बच्चों के चेहरे को पढ़ लेती है कि कब वो खुश है, कब नाराज है और कब उसे डर लगता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था, मुझे डर लगता है।

माँ हमारे लिए इस दुनिया का एक ऐसा महफूज आशियाना है जहाँ हम बिना दस्तक दिए पहुँच जाते हैं, जहाँ कोई सवाल नहीं पूछे जाते, जहाँ हर गलती माफ हो जाती है, और उस जगह का नाम है माँ। सचमुच माँ पास हो या ना हो, उसका एहसास हर वक्त हमारे साथ रहता है, और हर मुश्किल में हौले से वो हमारे कानों में कहती है, मैं हूं ना, फिक्र मत कर।

माँ जिंदगी का संबल होती है, जिंदगी का विश्वास भी वही है, रगों में बसी संस्कार और जीवन का सार भी वही है। मैंने कल शब चाहतों की सारी किताबें फाड़ दी, मैंने कल शब चाहतों की सारी किताबें फाड़ दी, सिर्फ एक कागज पे लिखा लव से मां रहने दिया। और आज की रांची मेलोडीज में बस इतना ही।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम रांची मेलोडीज। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए। उन्होंने परिसर में स्थित ध्यान मंदिर और 9 सेवा प्रकल्पों का लोकार्पण किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसिक रूप से शांत युवाओं से विकसित भारत का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा, जल और बिजली का संरक्षण आर्ट ऑफ लिविंग है। श्री मोदी ने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन शैली अपनाने की जरूरत है। असम में आज केंद्रीय पर्यवेक्षक जेपी नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। श्री नड्डा ने बताया कि हिमंता बिस्वा शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया है। बाद में श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात कर सरकार गठन का दावा पेश किया। 12 मई को दूसरी बार हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजधानी रांची के काके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कल से 2 दिवसीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के पहले दिन कल जिलावार आकस्मिक योजनाओं पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। वहीं दूसरे दिन 12 मई को खरीफ पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े एक्सटिंक ऑपरेशन को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए डीएसओ सहित विशेष टीम गठित की गई है और आरोप सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत पर काम करती है तथा भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में दोपहर बाद गरज के साथ हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के तत्कालिक पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ घंटों में खूंटी, सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम जिले के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवा के चलने और वज्रपात की भी आशंका है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 4:02 हो चुके हैं और ये वक्त है बाल श्रोताओं के कार्यक्रम बाल सभा का। कार्यक्रम हम सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: जय हिंद बच्चों। बच्चों कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बच्चे स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी। बच्चों आज है रविवार, यानी थोड़ी मस्ती, थोड़ा आराम और ढेर सारी फुर्सत का दिन। और आज की सुबह तो सच में बहुत सुहानी है।
1: सुबह का समय, हल्की धूप, ठंडी हवा और पेड़ों पर बैठी चहचहाती चिड़ियाँ, क्या दृश्य है ना? बच्चों कितना शांत और सुंदर लगता है ना?
0: बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद हमें सुप्रभात कह रही हो। और इस सुंदरता का एक अहम हिस्सा है ये छोटी छोटी चिड़ियाँ।
1: और ये नन्ही नन्ही चिड़ियाँ वातावरण और पर्यावरण के साथ साथ हमारे जीवन में भी खुशियाँ भर देती हैं। पेड़ों की डालियों पर फुदकना, आंगन में आना जाना और इनकी हर छोटी सी हरकत मन को मोह लेती है बच्चों।
0: लेकिन बच्चों क्या आप ये जानते हैं कि ये चिड़िया रहती कहाँ है? दिन भर तो इधर उधर फुदकती रहती हैं, कभी आंगन में, कभी छत पर, तो कभी पेड़ की।

0: की डालियों पर और शाम होते ही वापस अपने घर में।
1: हाँ बच्चों, इन चिड़ियों का एक छोटा सा घर होता है जिसे हम कहते हैं घोंसला। पेड़ों की डालियों पर बना वो नन्हा सा घर कितना छोटा दिखता है ना, उतना ही खास होता है।
0: हाँ बिल्कुल, पता है बच्चों, चिड़िया अपना घोंसला बहुत मेहनत से बनाती है। वे सूखी टहनियाँ, घास, पत्ते और रेशों से अपना घर तैयार करती है। ये उनके लिए सिर्फ एक घोंसला नहीं होता, बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए उनका सुरक्षित संसार होता है।
1: हाँ बच्चों, तिनका तिनका जोड़कर प्रेम, धैर्य और इतनी मेहनत से चिड़ियाँ अपना घोंसला तैयार करती हैं ताकि वो अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके।
0: लेकिन कभी कभी हम अनजाने में, खेल खेल में या जिज्ञासा के कारण भी उनके घोंसले को छेड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं, जो उनके लिए बहुत कष्टदायक होता है। बच्चों
1: बच्चों जरा सोचिए, अगर कोई हमारे घर को नुकसान पहुंचाए तो हमें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? ठीक वैसे ही चिड़िया महसूस करती हैं, वो भी परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है।
0: इसलिए बच्चों, हमें एक बहुत छोटी लेकिन जरूरी बात याद रखनी है कि घोंसले किसी का घर होते हैं, उन्हें छूना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए।
1: अगर कभी पेड़ पर घोंसला दिखे बच्चों तो उसे दूर से देखें, बिना छुए, बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए। अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताएं, क्योंकि चिड़िया भी हमारी तरह अपने घर से बहुत प्यार करती है।
0: बिल्कुल बच्चों, हम सब जानते हैं कि चिड़िया हमारे पर्यावरण का एक अनमोल हिस्सा है। वे न केवल प्रकृति को सुंदर बनाती हैं, बल्कि हमारे पर्यावरण का संतुलन भी बनाए रखती हैं।
1: अगर हम घोंसलों को नुकसान पहुंचाते हैं बच्चों, तो हम न केवल चिड़ियों को दुख देते हैं बल्कि प्रकृति के संतुलन को भी बिगाड़ रहे होते हैं।
0: इसलिए याद रखें बच्चों कि पेड़ पौधे और चिड़िया हमारी धरोहर हैं, उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। घोंसलों को छेड़ना गलत है और हमें दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करना चाहिए।
1: बच्चों हमें पता है कि आप सब चिड़ियों से बहुत प्यार करते हैं, इनकी आवाज आपको अच्छी लगती है, लेकिन सच्चा प्यार केवल महसूस करने में नहीं है, सच्चा प्यार है उनकी सुरक्षा करने में, है ना?
0: हाँ बिल्कुल, हमें ये समझना होगा बच्चों कि प्रकृति में हर जीव का अपना स्थान और अपना महत्व है। इसलिए अगर चिड़ियों से है प्यार, तो ना करें घोंसलों से छेड़छाड़।
1: वाह क्या बात कही है दीदी ने।
0: बच्चों अभी हमने बातें की अपने आसपास रहने वाली चिड़ियों की, जो हमारे घर आंगन और छतों पर फुदकती रहती है और पेड़ों पर अपना घर बनाती है।
1: लेकिन क्या आप जानते हैं बच्चों कि कुछ चिड़िया ऐसी भी होती हैं जो एक जगह हमेशा नहीं रहती, ये मौसम बदलने पर हजारों किलोमीटर दूर से हमारे देश में भी आती हैं और दूसरे देशों में भी जाती हैं।
0: और इन्हें ही कहा जाता है प्रवासी पंछी, यानी ऐसे पक्षी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते हैं। बच्चों जरा सोचिए, इतनी लंबी यात्रा करना इनके लिए कितना कठिन होता होगा, है ना?
1: तेज हवाएं, लंबा रास्ता, थकान, फिर भी ये नन्हे पंछी हिम्मत नहीं हारते बच्चों। जब ये हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे तालाब, पेड़ पौधों और खेतों की शोभा और भी बढ़ जाती है।
0: बिल्कुल, ये प्रवासी पंछी ठंड के मौसम में हमारे यहाँ आती हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें अनुकूल वातावरण और भोजन मिल जाता है। बच्चों ऐसे कई प्रवासी पंछी हैं जो हमारे देश आते हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन, राजहंस और बार हेडेस गूस। साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से भारत आता है, वहीं राजहंस ये अपनी गुलाबी रंगत के लिए जाने जाते हैं, और बार हेडेस गूस ये बत्तख के प्रजाति के होते हैं बच्चों। और साइबेरियन क्रेन के बारे में और भी आपको बताएं तो ये अपनी लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध हैं।
1: इसके अलावा बच्चों कॉमन कुकू ये भी सर्दियों में भारत आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पक्षी हैं जो भारत आते हैं, उन्हीं में से एक है यूरोपीय रोलर। ये एक सुंदर प्रवासी पक्षी है जो भारत आता है और खास करके ये गुजरात के क्षेत्र में ज्यादा देखा जाता है। इसके अलावा लाल पीठ वाले श्रीके, ये भी एक प्रवासी पक्षी है जो गुजरात में आता है और हमारे झारखंड में आता है। दीदी सबसे ज्यादा हमारे झारखंड में आता है साइबेरियन पक्षी।
0: बच्चों आपने भी ये ध्यान दिया होगा ना कि सर्दियों में अचानक कुछ नए पंछी दिखाई देने लगते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं। कुछ तो झुंड में उड़ते हैं और कुछ तालाब के पास दिखते हैं।
1: प्रवासी पक्षी सिर्फ सुंदर ही नहीं होते बच्चों, बल्कि ये हमारे सच्चे दोस्त भी होते हैं। ये कीड़े मकोड़े खाकर फसलों की रक्षा

0: बीज फैलाकर नए पेड़ उगाने में मदद करते हैं और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं।
1: बिल्कुल बच्चों, जब भी आप आसमान में उड़ते इन पंछियों को देखें तो ये बात जरूर याद रखें कि ये सिर्फ पंछी नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर का सफर तय करने वाले हमारे मेहमान हैं, हमारे दोस्त हैं,
0: जिनका स्वागत करना, जिनकी मदद करना, सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है बच्चों, जो आप जरूर निभाएंगे और वो भी छोटे छोटे लेकिन बड़े ही महत्वपूर्ण काम है।
1: जैसे अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, साफ पानी रखकर, पंछियों को डराए बिना और अपने आसपास का वातावरण साफ रखकर।
0: तो याद रखें बच्चों, ये भी हमारे दोस्त हैं जिन्हें हमारे प्यार और सुरक्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें कभी परेशान ना करें, नुकसान ना पहुंचाएं और इन्हें डराए नहीं।
1: बिल्कुल, जब हम पक्षियों का ध्यान रखते हैं तो हमारा वातावरण और भी सुंदर हो जाता है बच्चों, और प्रकृति से प्रेम करना ही सच्ची समझदारी है। और बच्चों आपको एक बात और बता दें, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है बच्चों। ये दिन पक्षियों के संरक्षण और उनके प्रवास के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है।
0: तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप जो हमारे यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, आप उनकी सुरक्षा करेंगे और उन्हें किसी भी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाएंगे। और दीदी, जानकारी की बातें तो बहुत सारी हैं आज हमारे पास, लेकिन उससे पहले हम बच्चों का कुछ मनोरंजन करवा दें तो कैसा रहेगा?
1: बिल्कुल, बच्चों को सुनवाते हैं ये बाल गीत।

0: अच्छा लगा ना। तो चलिए, हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, वो भी कुछ सुनाना चाहते हैं, तो चलिए दीदी उनसे भी कुछ सुन लेते हैं।
1: क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम प्रीशा नाया है।
1: आज आप अपने दोस्तों को क्या सुनाना चाहेंगी?
2: मैं अपने दोस्तों को एक कविता सुनाने चाहूंगी जिसका शीर्षक है विनती। ईश्वर तुमने सूर बनाया जो अंधियारा दूर भगाता, प्रभु तुमने चंदा चमका स्वयं जगता हमें सुलाता, तुमने जल की धार बहाए हमसे कहते बढ़ते जा, झजे सुर में झरना गाता कभी न तुम मन में घबरा, दीपक जल का हमें सिखाता तुम दुख सह कर भी सुख देना, धरती का कंकन सिखलाता सिर पर सारे दुख सह रहना, हम इस धरती पर रहते धरती माँ के संतान बने, हे प्रभु हम पर दया करो हम भी अच्छे इंसान बने, धन्यवाद।
3: बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता।
1: बच्चों कहते हैं अगर हौसले बड़े हो तो उम्र छोटी नहीं पड़ती। आज बाल सभा में हम मिलवाने जा रहे हैं आपको एक ऐसी नन्ही स्टार से जिसने अपनी अनोखी कला से सबको हैरान कर दिया है। सिर्फ 10 साल की उम्र और नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज। जी हाँ, नाक पर हुला हूप घुमाकर रिकॉर्ड बनाने वाली आदित्रि सिंह। बच्चों आदित्रि ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड तक में अपना नाम दर्ज कराया है। तो चलिए स्वागत करते हैं नन्ही चैंपियन आदित्रि सिंह का। हेलो आदित्रि, बहुत स्वागत है आपका बाल सभा में।
4: थैंक यू।
1: अच्छा आदित्रि, सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपको हुला हूप घुमाने का ये आइडिया कैसे आया, ये क्यों पसंद है आपको जबकि इतने सारे खेल हैं?
4: मुझे ये आइडिया अपने दोस्त को देखकर आया, वो इसको करती थी। बाकी खेल तो अच्छे हैं लेकिन हुला हूपी में मुझे एक सुपर हीरो जैसा फीलिंग आती है। जब मैं हुला हूप घुमाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई जादुई शक्तियाँ हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं इसे टीवी देखते, गाना सुनाते पैसे भी कर सकती हूँ।
1: बिल्कुल, क्या बात है। अच्छा आप एक बात सच सच बताइए कि रिकॉर्ड बनाते समय डर लगा था या मजा आया?
4: थोड़ा थोड़ा डर और बहुत सारा मजा मिलकर रिकॉर्ड की डर को गायब ही कर गया।
1: और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाने के लिए आप रोज कितनी प्रैक्टिस करती थी?
4: जब मेरे मन में रिकॉर्ड बनाने का ख्याल आया था तो मैं इसको खेलने समय करती थी लगभग एक घंटा, और मैं इसको सुबह भी करती थी। जहाँ लोग एक्सरसाइज और योगा करते हैं सुबह उठकर, वहीं मैं हुला हूप करती थी।
1: वाह, वैसे अभी आप किस क्लास में पढ़ती हैं?
4: 6A।
1: तो अब आप पढ़ाई के साथ खेल को कैसे मैनेज करती हैं?
4: मैं पढ़ाई और प्रैक्टिस के लिए अपना टाइम टेबल बनाती हूँ, स्कूल के काम करती हूँ, उसके बाद फिर मैं शाम को प्रैक्टिस करती हूँ जिससे मेरे दोनों काम मैनेज हो जाते हैं।
1: बहुत खूब। और आपको और क्या पसंद है?
4: मुझे और स्केटिंग करना पसंद है, वेबोर्ड चलाना पसंद है और रिबन डांस करना पसंद है।
1: चलते चलते अपने दोस्तों को आप क्या कहना चाहेंगी, कुछ संदेश देना चाहेंगी?
4: जी बिल्कुल, मैं अपने दोस्तों को ये बताऊंगी कि मस्ती के साथ साथ पढ़ाई और अपने हॉबी पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम दिल से किसी चीज को करना चाहे ना तो वो हमें जरूर मिलता है। जैसे मैंने अपने हुला हूप के पैशन को एक रिकॉर्ड में बदल दिया।
1: बिल्कुल।
4: मैं अपने दोस्तों को बोलना चाहूंगी कि तुम भी मेहनत करो अपने हॉबी पे जो तुम्हारा हॉबी है और उसमें सक्सेस हासिल करो, रिकॉर्ड बनाओ।
1: बिल्कुल सही कहा आदित्रि आपने, और शाबाश आदित्रि, आपने सच में साबित कर दिया कि मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। और बाल सभा की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
4: थैंक यू सो मच मैम।
3: आदित्रि से मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्यों बच्चों, और आदित्रि जैसे बच्चों से हमें प्रेरणा भी मिलती है। तो चलिए अब कुछ और जानकारी की बातें।
1: हाँ बिल्कुल,
0: तो शुरू करते हैं जानकारी का ये सिलसिला, और अगली जानकारी क्या है?
1: बच्चों गर्मियों का मौसम आ चुका है, तेज धूप और गर्म हवाएं केवल हमें ही नहीं बल्कि हमारे पेड़ पौधों को भी प्रभावित करती हैं।
0: हाँ बिल्कुल, गर्मी अपने पूरे असर में है बच्चों, और इस मौसम में सिर्फ हम ही नहीं हमारे बगीचे के पौधे भी परेशान होते हैं। बच्चों पौधे बोल नहीं सकते लेकिन उनकी हालत बहुत कुछ कह जाती है।
1: हाँ, और अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो हरियाली सूखने लगती है, खासकर गर्मियों में। इसलिए जरूरी है कि हम बगीचे की देखभाल को हल्के में

0: ना ले। बच्चों, आपने भी देखा होगा कि गर्मी में पौधे जल्दी सूखने लगते हैं।
1: ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि तेज धूप में मिट्टी की जो नमी है वो जल्दी खत्म हो जाती है। इसलिए सबसे जरूरी है कि पौधों को समय पर पानी देना। सुबह या शाम के समय पौधों को पानी देना सबसे अच्छा होता है।
0: दोपहर की तेज धूप में पानी देना नुकसान कर सकता है बच्चों, और बहुत ज्यादा पानी भी पौधों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए पानी उतना ही दे जितनी
1: पौधों को आवश्यकता हो। और सिर्फ पानी ही नहीं बच्चों, मिट्टी का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर मिट्टी सूखी और सख्त हो जाए तो पौधों की जड़ें ठीक से सांसें नहीं ले पाती।
0: हाँ, इसलिए समय समय पर मिट्टी को हल्का सा खोदना जरूरी है। इससे हवा अंदर तक पहुंचती है और पौधे मजबूत बनते हैं।
1: एक और बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, और वो ये है कि पौधों को छांव देना। बहुत तेज धूप में छोटे पौधों को छांव की जरूरत होती है बच्चों, तो अगर संभव हो तो पौधों को तेज धूप से बचाने के लिए हल्की छाया की व्यवस्था जरूर करें। छतरी या कपड़े की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं।
0: हाँ बच्चों, ये छोटी छोटी कोशिशें ही तो बड़े बदलाव लाती हैं। बच्चों, एक और महत्वपूर्ण काम है जो आप कर सकते हैं, और वो है सूखे पत्तों को हटाना। क्योंकि सूखे और पीले पत्ते सिर्फ पौधे की खूबसूरती को ही नहीं घटाते बल्कि उसकी ताकत भी कम कर देते हैं।
1: इसलिए उन्हें समय पर हटाना जरूरी है बच्चों। इसके साथ ही साथ छोटे कीड़े भी पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसके लिए महंगे दवाइयों की जरूरत नहीं होती। नीम का पानी या हल्का घरेलू उपाय भी पौधों की रक्षा कर सकता है बच्चों।
0: गमलों को हमेशा एक ही जगह पर ना रखें बच्चों, उन्हें ऐसी जगहों पर रखें जहां उन्हें सही मात्रा में धूप और हवा मिल सके। क्योंकि हर पौधे की जरूरत अलग होती है, कुछ को ज्यादा धूप चाहिए तो कुछ को कम।
1: और अगर हम ये समझ लें तो पौधा खुद ही स्वस्थ रहने लगते हैं। बच्चों, लापरवाही धीरे धीरे असर दिखाती है, और जब तक हम समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
0: इसलिए ध्यान रखना जरूरी है कि बगीचे की देखभाल सिर्फ काम नहीं, एक जिम्मेदारी है जिसे निभाना हमें सीखना चाहिए। और ये सिर्फ आपके माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है।
1: हम सबकी जिम्मेदारी बनती है बच्चों, पेड़ पौधों की देखभाल करें।
0: बिल्कुल। और एक छोटा सा कदम और, रसोई से निकलने वाले सब्जियों के छिलके इत्यादि का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाए तो वो पौधों के लिए खाद बन सकते हैं बच्चों।
1: यानी हम कचरे को भी काम में ला सकते हैं बच्चों। और ये आदत न सिर्फ बगीचों को बेहतर बनाती है बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखती है।
0: याद रखें बच्चों, अगर हम प्रकृति से लेते ही रहेंगे और कुछ लौटाएंगे नहीं तो एक दिन संतुलन बिगड़ जाएगा।
1: इसलिए बच्चों, बगीचे की देखभाल को समझदारी और संवेदनशीलता के साथ अपनाएं, क्योंकि यही छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, बगीचे की देखभाल को आदत बनाएं, क्योंकि हर पौधा, हर हरा पत्ता हमारे भविष्य की सांस है।
1: तो दीदी, हमने बच्चों को जानकारी दे दी कि गर्मियों में बगीचों की देखभाल कैसे करना है, पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करनी है। और अब बच्चों को हम सुनाते हैं एक बाल कथा। आज हम जो बाल कथा सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है परिश्रम का फल।
0: बहुत दिनों की बात है, फूलपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सभी लोगों में आपस में बड़ा प्रेम था। मुसीबत पड़ने पर सभी एक दूसरे की सहायता करते थे। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती व पशुपालन था। एक बार दुर्भाग्य से वहां अकाल पड़ा। वर्षा न होने से फसलें नष्ट हो गई, नदी नाले तालाब सूख गए, सभी लोग भूखे मरने लगे। संचित किया हुआ अनाज सब खत्म हो गया।
1: आदमी तो क्या, पशु पक्षी तक सभी बेहाल हो गए। लोग पीने के पानी के लिए तरसने लगे। ऐसे में मुखिया ने पंचायत बुलाई और सबसे सलाह मांगी। कोई भी सही सलाह न दे पाया। रामू नाम के एक किसान ने कुआं खोदने की सलाह दी ताकि पीने की पानी की समस्या का निराकरण किया जा सके। कोई भी उसकी इस बात से सहमत न था। सभी को लग रहा था कि वो बहुत मेहनत का काम है, और जरूरी भी नहीं है कि जहाँ कुआं खोदा जाए वहाँ पानी निकल ही आए। रामू को पूरा विश्वास था कि यदि सभी लोग मिलकर परिश्रम करें तो कुआं अवश्य खोदा जा सकता है।
0: पर कोई उसका साथ देने को तैयार न था। अंततः पंचायत बिना कोई निर्णय लिए ही उठ गई, पर रामू ने हिम्मत न हारी। रामू के मित्र श्यामू ने उसका साथ देने का निर्णय लिया। दोनों मित्र कुदाले व फावड़े लेकर गाँव के मंदिर में पहुँचे। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की और वही मंदिर के किनारे ही कुआं खोदने का निश्चय किया। अपने हृदय में ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा और विश्वास लिए उन्होंने कार्य आरंभ किया।

0: पड़ी। खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू आ गए और गले रुंध गए। उन्होंने ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद दिया। उनकी मेहनत सफल हो गई थी। गांव वालों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। कल तक जो उनका मजाक उड़ाते थे, आज उनके सिर लज्जा से झुक गए। रामू और श्यामू ने दिखा दिया कि लक्ष्य के प्रति दृढ़ विश्वास लेकर यदि कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। किसी ने सच कहा है कि मेहनत का फल मीठा होता है।
1: तो कैसी लगी बच्चों कहानी? बहुत अच्छी कहानी है। और हमें परिश्रम से घबराना नहीं चाहिए और हमें तब तक उस काम में जुटे रहना चाहिए जब तक हमें सफलता न मिल जाए, है ना?
0: बिल्कुल।
1: और कहानी में कहा भी गया है आखिर में कि मेहनत का फल मीठा होता है ना बच्चों? तो चलिए अब कुछ जानकारी की बातें। हम हर हफ्ते आपको किसी न किसी एक प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में आपको जानकारी देते हैं बच्चों। तो आज हम जिस प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, उनका नाम है आर के नारायण।
0: बच्चों, आर के नारायण एक ऐसे महान लेखक थे जिन्होंने साधारण लोगों की साधारण जिंदगी को बहुत ही सुंदर और रोचक कहानियों में बदल दिया। आर के नारायण का जन्म 1906 में भारत में हुआ। बचपन में वे अपनी दादी के साथ रहते थे। दादी उन्हें रोज कहानियां सुनाती थी। यहीं से उनके मन में कहानी लिखने का शौक पैदा हुआ। वे पढ़ाई में बहुत तेज नहीं थे, लेकिन उन्हें किताबें पढ़।
2: अभी आप सुन रहे थे बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम बाल सभा। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए श्रोताओं, आज हमारे रांची केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 4:35 पर आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गाने। कार्यक्रम होगा सांझ सरगम। प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे शाम 5 बजे और 5:02 पर आप सुनते हैं युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

श्रमिक लोग, ये कार्यक्रम का वक्त होगा शाम 5:30, जिसमें आज श्रोताओं चर्चा होगी माँ, जीवन की पहली शिक्षक, रेडियो से डिजिटल युग तक आकाशवाणी की यात्रा, सड़क सुरक्षा का संकल्प, जिम्मेदार नागरिक की पहचान और नई श्रम संहिता में श्रमिकों की सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की और शाम 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

कार्यक्रम खेती बारी का समय रहेगा 6:02, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा जैविक कीट प्रबंधन। प्रश्नोत्तरी में आप सुनेंगे बदलते मौसम का झारखंड के कृषि और वनों पर प्रभाव। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर ताहिरा अर्जुमंद और भेंटकर्ता होंगे कृष्ण जीवन पौराणिक। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। और 6:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया, जिसमें चर्चा होगी पर्यावरण संरक्षण। और एक खोटा वार्ता भी हम आपको सुनवाएंगे, जिसमें विषय होगा आज का हमारे युवा राष्ट्र निर्माता। वार्ताकार होंगे ज्ञान रंजन कुमार, प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की।

प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा शाम 7 बजे, 7:11 पर जिले में आजकल। श्रोताओं, आज रविवार है और आज के दिन आप सुनते हैं हिंदी साहित्यिक पत्रिका शतदल। समय होगा 7:15 और 7:45 पर आप सुनेंगे संताली समाचार पत्रिका। रात 8 बजे हम लेकर आएंगे श्रोताओं के लिए फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीगंधा और 8:15 पर आज आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। और 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। समाचारों का समय होगा 8:45 से। पहले आप सुनेंगे समाचार संध्या 9 बजे News@9 और 9:15 पर होंगे उर्दू में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: 11 बजे से आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और रात 11:10 पर हमारी सांध्यकालीन सभा का समापन होगा। तो ये थे कार्यक्रम विवरण, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझे सरगम।
1: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम सांझे सरगम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त रौनक जहां। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में, रानी मलिक के बोल, आनंद मिलिंद का संगीत, फिल्म का नाम छोटे सरकार।

रानी मलिक का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे आनंद मिलन के संगीत निर्देशन में। फिल्म थी छोटे सरकार और आवाजें आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण की। प्रोग्राम की अगली पेशकश फिल्म मोहरा से, गीत आनंद बख्शी का, संगीत वीजू शाह का और आवाजें उदित नारायण और साधना सरगम की।

इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर।

देव कोहली के बोल अभी आप सुन रहे थे, जिसे संगीत से सवारा था राजेश रोशन ने। आवाजें थी कुमार सानू और अलका याग्निक की। फिल्म का नाम था श्रोताओं सबसे बड़ा खिलाड़ी। और अब सुनिए आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, साधना सरगम की आवाज में गीत आनंद बख्शी का, संगीत बीजू शाह का, फिल्म का नाम विश्वात्मा।

0: इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम सांझ सरगम अब खत्म होता है। अगली मुलाकात तक के लिए अपनी दोस्त रौनक जहां को दीजिए इजाजत। नमस्कार, हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज चुके हैं, आइए सुने प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्वा सरमा ने आज असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की और राज्य में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश किया। इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने हिमंता बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। श्री शर्मा 12 मई को असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज गोड्डा के मेहरमा प्रखंड अंतर्गत धोरीचक से कुमारडीहा तक पथ सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने बेनीदास भूसका तक बनने वाली सड़क की आधारशिला भी रखी। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। ग्रामीण विकास मंत्री ने इस दौरान जन समस्याएं भी सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। श्रीमती सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ढांचागत संरचना और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दे रही है। राजधानी रांची के काके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कल से 2 दिवसीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शिरकत करेंगी। कार्यक्रम के पहले दिन कल जिलावार आकस्मिक योजनाओं पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। वहीं दूसरे दिन 12 मई को खरीफ पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। गढ़वा में पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सफलता हाथ लगी है। गढ़वा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 देशी कट्टा, कारतूस, मोबाइल और 2 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। ये अपराधी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इसी क्रम में अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में दोपहर बाद गरज के साथ हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के तात्कालिक पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ घंटों में बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार और लोहरदगा जिले के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवा के चलने, ओलावृष्टि और वज्रपात की भी आशंका है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से FM की 101.7 MHz पे। सांध्यकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। इस सभा में आप सबों के बीच मैं हूं राधा। नमस्कार। सभा के आरंभ में सांध्यकालीन सभा में प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा आइए सुनते हैं। शाम के 5:05 पर आप सुनेंगे फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती। कार्यक्रम खेती गृहस्थी हम प्रसारित करेंगे शाम के 5:30 पर। प्रमाणित बीज सही उपज, इस विषय पे इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। बकरी पालन पर विशेष बातचीत हम करेंगे विष्णु सतपति जी से कमलेंदु महतो। साथ ही सुनेंगे इस कार्यक्रम में चंद लोकगीत। शाम 6 बजे सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अकड़ा आप सुनेंगे शाम के 6:02 पर।

शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। शाम 6:55 पर हम चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से शाम 7 सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे शाम के 7:15 पर। फरमाइसी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुनेंगे रात्रि के 8:00। समाचार संध्या में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि के 8:45 पर। आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रमों में हम आपको पुनः शामिल करेंगे रात्रि के 9:15 पर। गजलों का कार्यक्रम महफिल आप सुनेंगे रात्रि के 10:00। फिल्म संगीत का कार्यक्रम शुरू के रंग आप सुनेंगे रात्रि के 10:30 पर। रात्रि 11:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और सभा समापन की घोषणा हम करेंगे रात्रि के 11:10 पर। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 1.7 MHz पे। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती।

फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। फौजी भाइयों, आज इस कार्यक्रम में हमारी माँ को समर्पित आज का ये कार्यक्रम रहेगा। हम सभी जानते हैं श्रोताओं, माँ सृजन और पोषण देने वाले स्नेह की मूर्त होती है। त्याग, धैर्य, ममता के साथ हमारा पालन पोषण कर एक सुंदर इंसान बनाती है। ऐसे माँ को कोटि कोटि प्रणाम।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम जय भारती में। जी हाँ श्रोताओं, हमारी माँ प्रेम एकदम निस्वार्थ भाव से हम सबों से प्रेम करती हैं, जो बिना किसी अपेक्षा निरंतर हम लोगों को देती रहती है, पोषण देती रहती है, पालन पोषण करती रहती है। कोई आशा आकांक्षा नहीं रखती है कि ये बच्चे बड़े होकर मुझे ये देगा, बच्चे मुझे देखेंगे, बच्चे मुझे प्यार करेंगे, ना। बिना किसी शर्त के अपना हर चीज़, हर सुख आराम को त्याग कर बच्चे की परवरिश में अपने आप को निछावर कर देती हैं। ऐसी माँ को आइए हम सभी याद करते हैं। माँ, जिनके पास माँ है वो सभी कितने धनवान है। आज के इस दिन सहो के लिए, उन माओं के लिए समर्पित है ये सुंदर सा गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म राजा और रंग से। आवाज़ है लता मंगेशकर की।

फौजी भाइयों, हम सभी जानते हैं माँ का आशीर्वाद और प्यार हमारी सबसे बड़ी ताकत है और यही ताकत हमें बचने और बढ़ने की राह में आगे लिए चलता है। सुंदर ऐसी माँ जो हमें हम सबों को सुंदर तरीके से पालन पोषण करके सुंदर जीवन देती है। जैसे धरती बीज को पालकर जीवन देती है, उसी प्रकार हमारी माँ अपने बच्चे को प्यार और पोषण से सींचती है। हम सभी माँ को करते हैं प्रणाम और सुनते हैं ये सुंदर सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म ईश्वर से, नीति

ये भावना है फौजी भाइयों, आंचल उसका अंबर सा, वो शीतल सी ममतामयी है, इस महान सत्ता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करती है। ऐसी ममतामयी माँ को आइए हम सभी करते हैं सत सत नमन। फिल्म जानवर का गीत अलका याग्निक सुनिधि चौहान के स्वर में आप सुन रहे थे। इसी के साथ हमारा ये फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती अब हम यहीं पे संपन्न करते हैं। हमारा आज का कार्यक्रम माँ पर समर्पित था। आप सभी श्रोताओं से इजाज़त लेते हैं इस कार्यक्रम से, पुनः मुलाकात।

सभी किसान भाई बहनों को कमलेंदु का सप्रेम जोहार एवं आज के खेती गृहस्थी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। किसान भाई बहनों, मौसम का मिजाज बदलते जा रहा है और इसके साथ ही हमें चलना भी है। जिस तरह का मौसम का रुख देखेंगे आप, उसी तरह अपने खेतीबाड़ी के कार्यों या फिर अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग और सतर्क भी रहें। जान है तो जहान है और हमें हर मौसम में, हर गतिविधि में अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने फसलों के प्रति सजग और सतर्क रहना बहुत। हाँ किसान भाई बहनों, इन दिनों देखा जाता है कि हम अपने खेतीबाड़ी के क्षेत्र के लिए, चाहे धान की खेती हो, सब्जी की खेती हो या फिर जो भी फसल की खेती हो, इनके पहले से ही हम तैयारी कर रहे हैं अपने खेतों की और मिट्टी की। किसान भाई बहनों, खेत के आसपास में जो भी अनावश्यक घास फूस या फिर झाड़ी आदि रहते हैं, ये भी हमारे फसलों के लिए नुकसान, क्योंकि आसपास में चाहे वो चिड़िया हो या फिर चूहे हों, सांप हो या फिर अन्य कीट पतंग है, ये भी नुकसान पहुँच। इसीलिए खेतों की सफाई के साथ साथ आसपास की सफाई भी जरूरी है, क्योंकि खेत के आड़ में अगर झाड़ी या फिर घास फूस गंदी रहेंगे तो फिर बहुत सारे ऐसे बील बनाने वाले, जो चाहे चूहे हों या फिर सांप, उनकी आड़ को, मेड़ को खराब करते हैं और छेद कर देते हैं, बील बनाते हैं। तो हमारा जो खेतीबाड़ी के क्षेत्र में जो भी हम सिंचाई करते हैं या फिर पानी पटवन करते हैं, तो बेकार बह जाता है। इसलिए इसको हम बचाने के लिए चूहों से और सांपों से बचाना होगा, इसके लिए साफ सफाई जरूरी। इसके साथ साथ हम कहना यह भी चाहेंगे कि हम जो कुछ भी लगाते हैं, चाहे वो सब्जी फसल हो, अनाज फसल हो या फिर कोई भी लतरदार या पौधे वाले पौधे हैं, तो इन्हें हम अच्छे बीजों का चयन करें जो प्रमाणित हो और जो विश्वसनीय दुकान हो, बीज भंडार हो, वहीं से खरीदें, ताकि पैसा का बर्बाद ना हो और मेहनत और जो भी आप समय देंगे वो बेकार ना चला जाए। इसलिए आप ऐसे बीज भंडार से खरीदें जो प्रमाणित हो, विश्वसनीय। इसके साथ साथ आप ये भी देख लें कि जो भी बीज आप खरीदते हैं तो उनमें छपे गए निर्देश जो हैं पाकेट में या फिर जो भी बोरियों में, थैलों में, उन्हें सही सलामत आप पढ़ लें कि बीज कब भरा गया है और इनका उत्पादन तिथि, पैकिंग तिथि और समाप्ति तिथि सब कुछ लिखा हुआ रहता है। उसके अनुसार ही आप सही बीजों का चयन करें और लगाएं, तो उनका उपज भी और जर्मिनेशन भी बहुत अच्छा रहता है। तो किसान भाई बहनों, इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि जो भी बीज, चाहे सामान्य बीज हो या फिर उन्नत बीज हो, बीज हमेशा नए किस्म के हों और पुष्ट होने चाहिए, ताकि धोखा ना जाए। हम चाहे नर्सरी में तैयार करें या फिर क्यारियों में तैयार करें, तो बीजों का जर्मिनेशन वो अच्छी तरह से होनी चाहिए, ताकि हम खेत के जो भी बड़े क्षेत्र में हम लगाना चाहें, एक अनुमानित के हिसाब से जितना पौधे आप चाहते हैं उसके हिसाब से सही सलामत हो जाए और उस बीज से आपका सही तरीके से लगाने का पूरा भी हो जाए। तो कुल मिलाकर ये भी हम कह सकते हैं कि विश्वसनीय और प्रमाणित बीजों का होना बहुत जरूरी। किसान भाई बहनों, आजकल के क्षेत्र में सभी कोई पुराने बीजों को छोड़ करके नए किस्म के बीजों का, यानी कि हाइब्रिड किस्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उत्पादन बहुत अच्छा होता है। और इसके लिए जो भी आप खाद या उर्वरक डालते, संभवतः आप ये चाहें कि खेत का जो मिट्टी है वो बर्बाद ना हो, कड़ा ना हो, और आने वाले कल भी हम, जबकि हम खेती कर रहे हैं, हमारे बच्चे खेती करेंगे, आने वाले जो हमारे पीढ़ी खेती करेंगे उनके लिए भी बरकरार बनी रहे, तो मिट्टी को बचाए रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें जैविक खाद या फिर जो पारंपरिक खाद हम पहले से करते आ रहे हैं, हमारे जो पूर्वज करते आ रहे थे, देसी गोबर खाद हो, सड़ी गली जो भी कंपोस्ट खाद हो, केंचुआ खाद हो, इस तरह से जैविक खाद का इस्तेमाल अगर करते हैं, तो आने वाले भविष्य में हम खेतों को, उनके मिट्टी को और उपजाऊपन को बनाए रख सकते हैं। तो किसान भाई बहनों, इन सभी बातों को आप जरूर ध्यान देंगे और खेतीबाड़ी को अपने इच्छा के अनुसार अंजाम दें। जैविक खेती से हमारे मिट्टी को या फिर पर्यावरण को या फिर हमारे स्वास्थ्य को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि लाभ ही होता है।

स्वास्थ्य में किसी प्रकार का कोई विकृति भी नहीं, बीमारी भी नहीं, इसलिए हमें जैविक खाद को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसान भाई उन्होंने बातों को यहीं पर विराम देते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा मुंडारी लोक।

0: अभी हम सुन रहे थे जादू मुंडरी एवं साथियों के स्वर में ये मुंडारी लोकगीत। अब इसके बाद आपके लिए एक जरूरी संदेश।
1: जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समुन्दर का जलस्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है।
0: इस संदेश के पश्चात किसान भाई बहनों, आज हम मिलते हैं एक पशुपालक विष्णु सतपति जी से, जो कि अधिकतर समय अपने बकरियों के साथ बिताते हैं और बकरियों के पालने के नियम और रख रखाव, देखभाल और कभी कभार अगर बीमार हो जाए तो फिर उनके लिए इलाज किस तरह से किया जाए, ये सभी सब कुछ उन्हें मालूम है और अच्छी तरह से जानते भी हैं, दूसरों को भी सलाह दे। तो हम बकरियों को कैसे रखें, इसका पालन कैसे करें, इन सभी बातों को मिलाकर के आज हम मिलते हैं विष्णु सतपति जी। किसान भाई बहनों, आज के खेती गृहस्थी कार्यक्रम में आज हम एक प्रबुद्ध व्यक्ति से मिलते हैं जो काफ़ी दिनों से बकरी पालन कर रहे हैं और पशुपालक में इनकी काफ़ी इच्छा है और पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं। तो आज हम मिलते हैं इसी क्रम में विस्तृत जानकारी के लिए। आज हमारे बीच में हैं विष्णु सतपति जी। तो हमारे खेती गृहस्थी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपको, हमारा जोहार।
2: जोहार जोहार।
0: तो विष्णु जी, आप जो ये बकरी पालन कर रहे हैं अपने खेती बाड़ी के साथ साथ, तो ये बकरी पालन का जो ये आप काम है, कितने वर्षों से कर रहे हैं? लगभग
2: लगभग ऐसे तो 8-10 साल हो रहा है।
0: अच्छा। हाँ,
2: वहाँ शुरू से किए थे कम से, और धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ते गया।
0: हाँ, धीरे धीरे बढ़ते गया और अभी तो काफ़ी बकरी आपके सामने हैं।
2: हाँ,
0: और सबको स्वस्थ भी दिख रहे हैं। तो बकरी पालन में जो बहुत कुछ बातें हैं, वैसे तो बीमारी से लेके खान पान से लेके उनका रहन सहन भी है और कैसे रख रखाव करनी चाहिए, तो आपको काफ़ी अनुभव है। तो ये बकरी पालन में शुरुआती दौर में आप 1-2 बकरियों से शुरू किए थे पालने का?
2: जी जी जी।
0: अच्छा, इसके बाद में फिर धीरे धीरे बढ़ते गए और अभी तो काफ़ी संख्या में है। तो इससे आपको जानकारी होगा कि ये बकरी आप किस तरह ज़्यादा मौसम पसंद करते हैं?
2: ऐसे तो बकरी के लिए सबसे अच्छा है गर्मी।
0: अच्छा। हाँ,
2: और बकरी को ज़्यादातर गर्मी ही चाहिए।
0: गर्मी ही चाहिए। हाँ, सही बात है।
2: 3 सीजन में जो है ना, सबसे ठंडा सीजन उनके लिए दिक्कत है।
0: दिक्कत। हाँ,
2: ठंडा सीजन में रख रखाव के लिए माने जैसे कि रात को बिछौना पुआल चाहिए।
0: अच्छा। हाँ,
2: और ऊपर से कोई कपड़ा पर ढकना पड़ता है।
0: हाँ,
2: घर में लाइट का व्यवस्था, गर्म।
0: हाँ, हाँ, जमीन तो मैंने नमी
2: नमी नहीं होना चाहिए।
0: अच्छा अच्छा
2: और उसके बाद मैंने साफ सफाई में ज़्यादा ध्यान देना।
0: हाँ,
2: चाहिए।
0: साफ सफाई तो बिल्कुल जरूरी है।
2: फिर बकरी को रखने के लिए भाड़ा चाहिए, मैंने ऊंचा स्थान में।
0: अच्छा, जमीन से कुछ
2: ऊंचे स्थान में, जैसे कि उनका जो है ना अपना जो मल मूत्र है।
0: हाँ, हाँ,
2: उसमें नहीं लगना चाहिए शरीर में।
0: अच्छा,
2: उसका। हाँ, हाँ, उसी में बीमारी पैदा होता है ज्यादातर।
0: अच्छा अच्छा, सही। हाँ,
2: बात। सफाई चाहिए ही चाहिए,
0: यानी कि जमीन के कुछ 2-3 फीट की ऊंचाई पर कोई बांस का पटरी वगैरह बना देते हैं?
2: हाँ, नहीं, हाँ, बांस का पटरी वगैरह मैंने कई चौकी उकी भी।
0: अच्छा, चौकी वगैरह भी। हाँ, इसका
2: भी लगाते हैं। और मैंने क्या बोलते हैं कि सबसे ज्यादा ध्यान होता है कि बकरी को कोई भी बीमारी से बचने के लिए मैंने हल्दी।
0: अच्छा।
2: हाँ, हल्दी उसको अगर बीच बीच में खिलाते रहिएगा तो उनको कोई भी बीमारी नहीं होने वाला है।
0: अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छी जानकारी है।
2: तीन चीज ऐसे तो बीमारी मैंने बकरी के लिए दवा चाहिए तीन ठो, एक हल्दी और दूसरा लहसुन और सरसों तेल।
0: अच्छा अच्छा हाँ।
2: जैसे सरसों तेल में जुकाम हुआ
0: हाँ।
2: तो हल्दी है, लहसुन और हल्दी में सरसों तेल इसको गर्म करके नाक में डालिए।
0: अच्छा
2: हाँ। उसम करके
0: हुँ।
2: तो उसमें आपको बरसात के लिए मैंने कोई दिक्कत नहीं है।
0: हाँ, मैंने शरीर को भी गर्म
2: गर्म
0: सर्दी जुकाम से बचाता है।
2: जी जी
0: हाँ, सही बात है। मैंने बकरी मैंने कभी कभी भींगने से सर्दी तुरंत हो जाते हैं तो इससे बचने का
2: वही आसान मैंने सरसों तेल यूज करना है ज्यादा।
0: अच्छा अच्छा हाँ
2: हाँ। और हल्दी मैंने खिलाते रहने से मैंने उसको हर चीज दूध भी बढ़िया निकलेगा।
0: हाँ
2: और बच्चा को पाल सकता है मैंने बकरी।
0: हाँ, हल्दी से अच्छा ही चीज है।
2: हाँ,
0: वो मैंने अच्छा एंटीसेप्टिक भी है।
2: हाँ, हाँ,
0: बीमारियों से भी बचाता है।
2: मैंने ज्यादातर हल्दी हम लोग खिलाते हैं।
0: अच्छा, तो ये जो खान पान में अधिकतर क्या पसंद करते हैं, मैंने घास पात के अलावा बहुत सारे ऐसे पत्तियां हैं पेड़ों की।
2: बकरी तो ज्यादातर मैंने पत्ता खाती है। ऐसे घास हम लोग बीच बीच में जब सीजन में आता है तो घास

0: खिला देते हैं।
1: हाँ हाँ
0: तो मैंने ज़्यादातर पत्ता ही
1: हाँ,
0: उनके लिए ये है,
1: जैसे बैर का पत्ता, पीपल
0: हाँ, उन्हें पत्ता में लगभग जो
1: बहुत
0: खाते
1: सारे
0: हैं
1: पत्ते हैं,
0: पत्ते हैं।
1: और आसपास में चराने के लिए भी सब काफ़ी सुविधा भी
0: हाँ
1: है।
0: सुविधा है।
1: अच्छा, तो ये बकरियां जो आप लोग जैसे पालन करते हैं, तो इसके लिए रहने का हमेशा क्या कोई बंद कमरा चाहिए या फिर रोशनदान वाला हवादार चाहिए, इस तरह का?
0: नहीं, सीजन के अनुसार में,
1: सीजन के अनुसार।
0: हाँ सीजन के, जैसे ठंडा दिन में हम लोग पूरा मैंने कवर करते हैं घर को,
1: हाँ, मैंने रूम
0: हाँ
1: पूरा
0: पूरा कवर,
1: गर्म रहना
0: हाँ
1: चाहिए।
0: गर्म रहना चाहिए।
1: अच्छा,
0: और अभी गर्मी दिन है तो गर्मी दिन में क्या बोलते हैं कि धूप ज़्यादा लगेगा,
1: धूप ज़्यादा लगे।
0: हाँ तो अंदर मैंने रूम के अंदर में रखते हैं, खिड़की विड़की खोल करके,
1: हाँ।
0: हाँ। और बरसात में तो अंदर ही रहता है घर के अंदर ही,
1: हाँ।
0: बरसात भी नहीं लगना चाहिए। बरसात मैंने ज़्यादातर बकरी का दुश्मन है
1: हाँ, नहीं ज़्यादा
0: बरसात,
1: भीगने से वो शरीर
0: हाँ
1: भी ठंडा हो जाता है,
0: हाँ
1: और ऐसे सर्दी जुकाम वगैरह तो जैसे आदमी को होता है, वो इस तरह का इनको भी थोड़ा सा देखभाल
0: हाँ
1: ज़्यादा ही
0: देख दे,
1: ज़रूरत।
0: हाँ।
1: हाँ, अच्छा, तो आगे हम ये जानकारी लेंगे, जैसे आप बकरी पालन किए हैं, तो शुरुआत में क्या अपने ही पूंजी से शुरुआत किए कि कोई सरकार तरफ से कोई
0: नहीं
1: ऐसा
0: नहीं नहीं
1: विशेष
0: सरकार
1: सुविधा?
0: तरफ से हमको कुछ ऐसा मैंने ये नहीं,
1: अच्छा,
0: हम अपना पूंजी से ही। ऐसे तो फर्स्ट बार मैंने एक ही गो बकरी लिए थे, तो
1: हाँ।
0: एक में से दो तीन ऐसे होते होते होते होते हम बकरी अब नहीं लिए,
1: अच्छा,
0: हाँ। लेकिन एक बात है, बकरी में कमाई का साधन अगर करना है तो उसमें क्या है, आप मैंने बाज़ार में मैंने जो बोदा आता है
1: अच्छा, हाँ
0: उसमें आप कम दाम का आता है,
1: हाँ
0: मैंने
1: हाँ
0: 2,500 से 3,000,
1: हाँ
0: उसको 3 साल रखिएगा
1: हाँ
0: तो मिनिमम तो 15,000 होगा, और
1: हाँ
0: उसको
1: हो
0: घर में
1: जाएगा।
0: रख के पालिए, मैंने मिनिमम तो 15,000 होगा 3 साल में।
1: अच्छा, हाँ,
0: यह भी हम करते हैं। और बाकी जो मेरा है मैंने क्या बोलते हैं कि बकरी सब है,
1: हाँ
0: उसमें भी बच्चा सब निकलता है,
1: निकलता है, हाँ।
0: हाँ, तो वो भी हम रख लेते हैं
1: अच्छा, हाँ, इसी
0: उसको,
1: तरह धीरे धीरे बढ़ते जा रहा
0: हाँ।
1: है। तो विशेष करके इनका जो अभी तो आज के दौर में काफ़ी अच्छा इनका मांस भी बिक्री हो रहा है
0: हाँ
1: और
0: हाँ
1: इनका रेट भी अच्छा है, तो
0: हाँ
1: विशेष करके शादी सीजन में या फिर किसी प्रकार का कोई त्यौहार हो गया इस समय तो ज़्यादा ही मांग रहता है ना।
0: हाँ हाँ इसीलिए तो हम मैंने बोदा सबको खस्सी करके मैंने 3 साल तक पाल देते हैं,
1: अच्छा, हाँ
0: उसमें परिवार अपना ठीक चल रहा है।
1: हाँ सही बात है। इसीलिए महात्मा गांधी ने भी कहा है कि ये बकरी जो है गरीबों की गाय है,
0: गाय है
1: इसीलिए आर्थिक स्थिति भी इससे काफ़ी सुधार होता है। बहुत
0: बकरी,
1: सारे अपने ग्रामीण क्षेत्र में मैंने बकरियां जो छोटे मोटे घर भी हैं उन वह भी बकरी पालन करते हैं, मुर्गी पालन वगैरह, जो इनकम का ये अतिरिक्त बहुत अच्छा स्रोत भी है,
0: बकरी पालन सबसे आसान है, हाँ
1: आसान भी है। हाँ
0: एकदम आसान है और सस्ता भी है।
1: हाँ
0: आप
1: हाँ
0: कम पूंजी से मैंने उसको, आप घर में कोई भी
1: शुरुआत
0: काम
1: कर सकते हैं।
0: मैंने कर रहे हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा में अगर बकरी रख रहे हैं
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: उसमें भी मैंने आपको फायदा है।
1: अच्छा, इसके
0: अगर
1: देखभाल के लिए दिन भर का तो कोई ज़रूरत नहीं है
0: नहीं,
1: इतने।
0: नहीं, दिन भर का कोई ज़रूरत नहीं है, दिन भर का कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा मैं पत्ता उत्ता लेके आ गए,
1: हाँ
0: आप खिला दिए, उसके बाद फिर थोड़ा सा घुमा दीजिए,
1: हाँ इसके बाद
0: और
1: अपना दूसरा काम कर सकते
0: हाँ
1: हैं।
0: इसको बांध के भी नहीं रख सकते हैं, क्या है कि
1: हाँ
0: बांधने से
1: थोड़ा बहुत
0: खुर जो
1: चलना
0: है ना,
1: फिरना,
0: नहीं
1: हाँ
0: बांधने से खुर में दर्द होता है,
1: हाँ
0: खुर
1: हाँ
0: बढ़ता भी है,
1: अच्छा, हाँ
0: हाँ। तो इसीलिए उनको जितना भी आप मैंने खिलाइए तो एक टाइम थोड़ा 2 घंटा के लिए घुमाना जरूरी है,
1: हाँ इधर उधर चलना फिरना
0: हाँ
1: जरूरी है।
0: बहुत जरूरी है।
1: और जैसे बकरियां देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में बहुत प्रकार के अलग अलग रंगों के भी होते हैं, जैसे काले हैं और भूरे रंग के भी होते हैं, कुछ लाल होते हैं, तो अधिकतर बकरियां जैसे बहुत सारे खरीदार होते हैं वो किस रंग के ज़्यादा पसंद करते हैं और क्या कारण है?
0: ऐसे तो मैंने क्या बोलते हैं, मादा हो चाहे ये हो खसी
1: खसी हो,
0: हो,
1: हाँ
0: हाँ सबसे ज़्यादा रेट में आता है काले,
1: अच्छा,
0: हाँ
1: हाँ
0: काला वाला जो है ना उसमें ज़्यादा रेट है,
1: अच्छा,
0: और सबसे कम दाम है मैंने व्हाइट वाला, सादा वाला
1: हाँ,
0: सबसे कम दाम,
1: अच्छा,
0: हाँ। तो इसका विषय में तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन बाज़ार का हिसाब से,
1: हाँ,
0: मार्केट का हिसाब
1: मैंने
0: हम भी बोल रहे हैं,
1: ज़्यादातर आन लोग
0: ज़्यादातर
1: भी
0: बिक्री काला ही वाला,
1: लोगों का पसंद मैंने काला ही
0: जी
1: ज़्यादा
0: जी
1: रखता
0: हाँ
1: है।
0: जी
1: हाँ, अच्छा, तो इसमें जैसे कि रंगों के बारे होती बातें हो रही है, तो काले रंग के ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं और मैंने बहुत लोग पालते भी हैं,
0: हाँ हाँ
1: जो खरीदते हैं वो काला ही ज़्यादा मैंने खरीदना
0: ज़्यादा
1: चाहते हैं।
0: जी
1: अच्छा, तो जैसे जैसे स्वस्थ बकरी है और ऐसे कुछ किसी का बीमारी है, तो पहचान मैंने शरीर में किस तरह का लगता है कि वो
0: देखिए,
1: चिकना शरीर या किस तरह का?
0: अगर मान लिया कि कोई भी मैंने बकरी आप स्वस्थ है मैंने अस्वस्थ है तो वो देखिएगा वो गुमसुम रहेगा,
1: गुमसुम रहेगा,
0: हाँ
1: हाँ
0: गुमसुम रहेगा, कुछ भी खाएगा नहीं, तो इसमें आप जान जाइए कि इसको कुछ बीमारी पकड़ा है।
1: हाँ,
0: तो उस हिसाब से आप उसको जितना भी आपका भाड़े में रहता है बकरी उसे अलग

0: कर दीजिए उसको,
1: अच्छा,
0: अलग
1: हाँ
0: मतलब
1: अलग
0: अलग
1: रखना
0: बांध दिए
1: चाहिए।
0: और उसको उपचार कर दीजिए। अगर
1: अच्छा,
0: मान लीजिए ज़्यादातर आपको नहीं पता चल रहा है कोई मने ये, तो निकटतम
1: हाँ, पशु
0: जो
1: चिकित्सक
0: पशु
1: हैं।
0: चिकित्सालय है उनसे संपर्क करिए, हाँ वो मने वो अपना ठीक कर देंगे।
1: हाँ,
0: और अगर मान लिया कि बकरी का बीमारी जानने के लिए तो पता चल जाता है,
1: उसका लक्षण देख के
0: लक्षण
1: थोड़ा
0: देख
1: सा।
0: के, अगर मान लिया कि बकरी बैठ रहा है उठ रहा है तो उसमें पेट में दर्द है,
1: अच्छा,
0: हाँ
1: हाँ,
0: पेट में दर्द है और कुछ भी नहीं कर रहा है चुपचाप है, तो फिर भी पेट का ही शिकायत है।
1: अच्छा,
0: हाँ जो भी हो
1: इसीलिए।
0: पेट का ही शिकायत होता है,
1: हाँ,
0: तो इसमें आप अगर मने गाभिल है तो उस मने बकरी को मने दवा तो डॉक्टर से का सलाह ही से देना चाहिए, अपना घरेलू उपचार नहीं करना चाहिए। और बाकी अगर मने कोई दूसरा बकरा है वगैरह है तो आप उसको मने सेंधा नमक वगैरह
1: अच्छा
0: जो काला
1: अच्छा
0: नमक होता है, सेंधा नमक होता है,
1: हाँ
0: अजवाइन है
1: हाँ
0: ना, उसमें हल्दी भी मिला दीजिए
1: अच्छा,
0: और मधु
1: हाँ
0: या गुड़
1: अच्छा
0: इसको
1: अच्छा
0: मिला करके आप उसको खिला दीजिए तो उसका पेट ठीक हो जाएगा।
1: अच्छा मैंने हजमी नहीं होता होगा
0: हाँ
1: इस तरह कभी कभी।
0: अच्छा, उसके बाद और एक बात है, आप बकरी को एनी टाइम स्वस्थ रखिए ना अगर चाहते हैं, तो जो हंडिया का जो बनता है रानू बोलते हैं,
1: हाँ,
0: एक व्हाइट सफ़ेद सफ़ेद गोली आता है
1: अच्छा,
0: जो मने हंडिया चावल दारू में मिलाता है,
1: मिलाते हैं।
0: हाँ उसको आप ले लीजिए बाज़ार से। वो कोई मतलब जड़ी बूटी से बना हुआ है, वो टैबलेट जो है ना जड़ी बूटी से
1: जड़ी
0: बना
1: बूटी,
0: हुआ है,
1: हाँ,
0: हाँ तो उसको मतलब लेके आइए और खाली पेट में सुबह दो गोली, वो छोटा छोटा गोली होता है, उसको गुड़ के साथ मिला के खिला दीजिए
1: अच्छा,
0: हफ्ता में एक बार, तो वो बकरी को जो है ना पेट साफ हो जाता है। हाँ
1: अच्छा,
0: वो बकरी कुछ भी खाने के लिए तरस रही है, मतलब उसको भूख
1: हाँ
0: बढ़ता है,
1: हाँ मैंने पाचन क्रिया अच्छा ही
0: पाचन
1: हो।
0: क्रिया बहुत अच्छा होता है उसमें,
1: अच्छा, हाँ
0: तो
1: ये।
0: वो भी हम देते हैं समय समय में, तो इसीलिए मैंने हमारा बकरी जो है मैंने हेल्थ मैंने ठीक रहता है।
1: हाँ, ये काफ़ी अच्छी जानकारी है। और बकरी पालन करते करते उनके लक्षणों को देखते हुए जो, और बीमारी जो किस तरह का होते हैं, ये सब मैंने देखते देखते आपको काफ़ी अनुभव भी हो
0: हाँ
1: गया। और
0: हाँ
1: देसी जो चिकित्सा है, इसी पद्धति से आप इसका इलाज भी करते हैं और अभी सब
0: जी
1: कुछ
0: जी
1: स्वस्थ भी है।
0: जी जी
1: मैंने ज़्यादा कुछ कोई डॉक्टरी सलाह लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता
0: नहीं नहीं
1: है।
0: हमको डॉक्टर इस बार मैंने पिछले 3 महीना लगभग बीत गया, गांव में एक बीमारी आया था
1: हाँ,
0: तो उसमें से किसी के घर से 10 गो, किसी के 8 गो, 6 गो
1: अच्छा,
0: ऐसे करके मर गया, तो
1: अच्छा,
0: मेरा एक एक मरा सिर्फ, वो भी दूध पीता बच्ची,
1: अच्छा,
0: हमको जानकारी नहीं हो पाया, एक मैंने अचानक ही बीमारी आया था,
1: अच्छा,
0: तो जब आया तो एक गांव में फैल गया, तो हमने अपना घरेलू इलाज किया, मैंने डॉक्टर से कोई सलाह नहीं ली, हाँ
1: अच्छा,
0: बाकी गांव में सब डॉक्टर का मैंने सलाह करके दवा वा खिलाया फिर भी बच नहीं सका, लेकिन
1: हाँ,
0: हम अपना सलाह से अपना ही होना ये से हम अपना दवा खिलाए तो मेरा सब बकरी बच गया, हाँ सिर्फ
1: अच्छा,
0: एक बच्ची बकरी छोटी सी थी दूध पीती हुई वो मरी, बस इतना
1: अच्छा
0: ही।
1: अच्छा तब तो काफ़ी अनुभव भी हुआ और इलाज से सफल भी हुए आप।
0: हाँ हाँ इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है बकरी पालन के लिए, आप धीरे धीरे धीरे धीरे मैंने सब जान जान मैंने जाइएगा कि
1: जान।
0: हाँ मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है
1: अच्छा
0: सब
1: अच्छा
0: मैंने पता लग जाएगा।
1: अच्छा एक छोटे बकरी जब से जन्म हुए उसके बाद में उनको देखभाल करते हुए, पालन पोषण करते हुए, एक बड़े साइज का उनको
0: हाँ
1: अगर बेचने लायक जब करते हैं तो लगभग कितना, 2-3 साल में तैयार हो जाते हैं?
0: 3 साल,
1: 3 साल लगभग।
0: हाँ एक मैंने बकरी को मैंने अगर खासी है तो 3 साल रखिए, उसमें आपको मैंने कोई
1: अच्छा,
0: दिक्कत नहीं, 3 साल रखना ही पड़ता है।
1: अच्छा, इतने साल में वो बेचने लायक होंगे और काफ़ी अच्छा साइज भी हो जाता है, बाजारों में इनका खरीददार भी हो जाते हैं।
0: हाँ
1: अच्छा, तो आप ये देसी बकरियों के साथ साथ और भी जैसे बड़े जाति के बकरियां भी होते हैं, वो सब
0: हाँ
1: भी
0: हाँ
1: पाल लेते हैं?
0: बड़े जाति वाला बकरी जो है ना बाजार से मिल जाता है,
1: अच्छा,
0: हाँ मैंने छोटा छोटा बच्चा
1: हाँ,
0: तो वो 350 रुपया KG के हिसाब से दर से मिलता है,
1: अच्छा, हाँ
0: हाँ तो जितना किलो है वो अपना क्या बोलते हैं कि वजन करके दे देगा,
1: हाँ
0: उसके बाद आप बच्चा को लेके आइए घर में, तो फिलहाल जब भी लाइएगा तो वो मैंने बड़ा जाती है नस्ल का है, उसको मैंने सूखा खाना खिलाना पड़ता है कम से कम 2 हफ्ता
1: अच्छा
0: यानी
1: अच्छा
0: 15 दिन, आपका कच्चा पत्ता नहीं सूखा पत्ता,
1: अच्छा,
0: और सूखा पत्ता अगर खाएगा तो उसमें कोई बीमारी नहीं है, उसको गर्म पानी खिलाना पड़ेगा कच्चा ने देहात से, उसको अपना जो हवा पानी से

0: हलाने के लिए, मैंने
1: हाँ
0: तैयार करने के लिए मैंने कम से कम 1 महीना उसका पीछे रहना पड़ेगा।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो अचानक लेके आ जाइए और मैंने गांव का, यहाँ का पानी और यहाँ का पत्ता जो है ना वो खाने से मर जाती है।
1: मैंने ऐसे देसी बकरियों से मैंने तुलना में उनका रहन सहन थोड़ा सा अलग
0: नहीं,
1: है।
0: हाँ, रहन सहन अलग है। मैं क्या उसको मैंने 1 महीना तक शुरुआत मैंने जो है बच्चा को 1 महीना मैंने उसको देखना पड़ता है ज़्यादा। मैंने कच्चा पत्ता या घास मैंने कुछ भी कच्चा नहीं देना है।
1: अच्छा, हाँ,
0: हाँ, कुछ नहीं देना है मैंने कच्चा में।
1: एक
0: और
1: महीने में उसको ठीक तरह से देख करके फिर यहाँ का माहौल में
0: हाँ,
1: जिस तरह
0: माहौल में धीरे
1: का
0: धीरे बदल जाएगा,
1: सूट कर
0: उसके बाद
1: जाएगा।
0: सूट हो जाएगा।
1: अच्छा,
0: पिछले साल मेरा एक हम लाए थे तो उसको बच्चा समय लाए थे, मैंने करीब उसका दाम था 4,800 रुपया में
1: अच्छा,
0: मार्केट से। तो 4,800 में लाए तो उसको 2 साल रखे,
1: हाँ,
0: 2 2.5 साल ऐसे
1: अच्छा,
0: रखे, तो काफ़ी बड़ा हो गया था
1: हाँ
0: धीरे
1: हाँ
0: धीरे। बीच में बीमारी भी 2 3 बार हुआ उसको,
1: अच्छा,
0: तो उस बीमारी में डॉक्टर से ही सलाह करके हम दवा ववा दिए, इंजेक्शन वगैरह दिए,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: ठीक हो गया। उसके बाद 2.5 साल रखने के बाद उसको 28,000 में बेचे।
1: अच्छा, हाँ,
0: हाँ
1: तो काफ़ी जल्दी भी बढ़ जाते हैं
0: हाँ हाँ
1: और
0: काफ़ी जल्दी बड़ा
1: खानपान सही
0: नस्ल का है
1: होना
0: ना। हाँ,
1: चाहिए।
0: खान पान सही होना चाहिए।
1: अच्छा, फिर जैसे पशु चारा वगैरह जैसे गाय और बैलों को हम लोग खिलाते हैं, उस तरह का पशु चारा भी कुछ खिलाते हैं कि इससे पत्तियाँ वगैरह
0: नहीं
1: सब
0: नहीं
1: से?
0: पशु चारा तो हम कभी किसी को दिए नहीं हैं, हम
1: हाँ,
0: अपना मैंने जो है जंगल से पत्ता वगैरह ला करके ही खिलाते थे, पत्ता घास वगैरह। कभी काल घर में मैंने वही रोटी वोटी वो
1: अच्छा,
0: वाला ना, मतलब रोटी वोटी खिला देते थे।
1: हाँ, अच्छा, तो अंततः हमारे किसान भाइयों को जैसे बहुत कई इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जो बकरी पालक हैं वो नए नए बकरी पालन के रूप में वो लोग अपना कुछ पूंजी करना चाहते हैं, पालना चाहते हैं, तो इस बकरी पालन से उनको किस तरह का आर्थिक स्थिति सुधार हो सकता है, क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: बकरी पालन में किसान भाइयों को अगर कोई चाह रहा है, बकरी पालन सबसे मैंने सुविधा और सबसे हल्का और सबसे आरामदायक है।
1: हाँ,
0: इसमें कम पैसा में भी हमने देखा है, बड़े बड़े घरों में भी
1: हाँ,
0: जो कभी बकरी चराने वाले उसका घर में भी एक दो बंधा ही रहता है।
1: अच्छा, हाँ,
0: तो इसमें क्या है कि आप एक्स्ट्रा विषय से सोच के चलिए, अगर मतलब घर में बहुत सारे काम है फिर भी आप
1: हाँ,
0: एक गो दो गो रख लीजिए, फिर भी उसमें आपको फायदा ही फायदा है।
1: अच्छा,
0: दूसरी बात है, अगर कोई मैंने चाहता है कि हम बकरी पालन ही करें तो बहुत बढ़िया है।
1: हाँ,
0: सालाना मैंने अगर हिसाब किताब किया जाए, सालाना वो कमा सकता है 90,000 रुपया तक कमा सकता है सालाना,
1: मैंने कोई सीमित नहीं है,
0: कोई सीमित
1: इसमें
0: नहीं है।
1: ज़्यादा भी हो सकता है।
0: लगभग हम जो कमाते हैं उस हिसाब से बता दें, 90,000 रुपया लगभग मैंने
1: अच्छा,
0: कमाई है।
1: सही बात है,
0: अगर
1: इसीलिए
0: इसी में अगर लगे रहिए तो
1: हाँ, इसके अलावा अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं, दिन भर तो ऐसे करना नहीं है, समय के अनुसार थोड़ा बहुत
0: जी। हाँ
1: घुमाना है, चराना है और उसका देखभाल के लिए जो खान पीने का व्यवस्था करना है। अच्छा, तो आपने हमारे किसान भाइयों को बकरी पालन से संबंधित काफ़ी कुछ जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार।
0: जी।
1: और इस मुलाकात के पश्चात पुनः हम मनोरंजन करते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा उड़िया लोकगीत सुरभि पान के स्वर।

0: श्री लोकगीत के साथ ही किसान भाई बहनों आज का खेती गृहस्थी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब कमलेंदु को विदा दें, सभी को पुनः एक बार जोहार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी कमलेंदु महतो के साथ। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना को 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आधुनिक ढांचागत संरचना के विकास पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर अग्रसर है और राज्यों के विकास पर बल दिया जा रहा है। राजधानी रांची के काके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कल से दो दिवसीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शिरकत करेंगी। कार्यक्रम के पहले दिन कल जिलावार आकस्मिक योजनाओं पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। वहीं दूसरे दिन 12 मई को खरीफ पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही झारखंड में असर दिखने लगा है। श्री दुबे एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहते नजर आए कि पाकुड़ में वर्षों से चल रहे अवैध टोकन सिस्टम और खनिज कारोबार पर लगाम लगने से ईमानदारी से काम करने वाले व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों को राहत मिली है। जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज अपराध गोष्ठी आयोजित हुई। इस दौरान श्री सिंह ने पुलिस पदाधिकारियों को विशेष रूप से साइबर अपराध पर नियंत्रण, महिला और बाल विकास, सुरक्षा के प्रति सजग रहकर कार्य करने का निर्देश दिया। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। चीन के शंघाई में आयोजित दूसरे चरण में आज झारखंड की दीपिका कुमारी और अंकिता भकत तथा कुमकुम मोहद की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ कर दिया और इसी के साथ उन्हें हराया। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज दोपहर बाद गरज के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 16 मई तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से FM के 101.7 MHz पे। प्रस्तुत है क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अकड़ा।

0: दिसम बंचा लगे हुंडी कन हगा को अंडो मिसी को जोहार हगा अंडो मिसी को अब सबिन बुआदाना अब वह हरो दिसम सीधा तेटा को जर रे काट आई किना अब वह हरा मरो को सिंह कुलालिका अंडो राजा कोलिका को टाई किना मुगल माराटा को जरियो का को टाई किना पंच चुईला का को एम किना पुड़ाहाट साय कोसवा अंडो चोटनागपुर महाराजा लिकन राजा को जरियो का को टाई किना मेंदो हगा को नेनबा सिंह होरो दिसुम जपारन राजा को गोटा हिंदुस्तान जरिए कर बुलंग बेपर अंग्रेज पुंडिसिता को दिंगाते अबुआ होरो दिसुम रे कब्जा लगित को कुरुमुटुआ कना इना मेंता हगा को अबु होरो दिसुम बंचाओ लगित बु तियरी ना हटा सेरम सेनारियो मयम गड़ा हरी और यो कबू सना अंग्रेज को दुलालें तन राजा को कुले ककी बु ककी कुआ अंडो बु रमारुनु कुआ उल्कुलान
1: एटे अबु
0: उल्कुलान
1: एटे अबु
0: होरो देसम
1: अबु वा
0: होरो देसम
1: अबु वा
0: राजा जारे
1: कबू वा
0: राजा जारे
1: कबू वा
0: बुलंग बेपर अंग्रेज पुंडी सीता को
1: हर नील कुआ अबु हर नील

ᱟᱸᱜᱨᱮᱡᱽ ᱥᱟᱭᱚᱵ ᱠᱚ ᱛᱟᱜ ᱨᱮᱠᱚ ᱦᱟᱹᱨᱤ ᱜᱩᱣᱟᱨᱤᱭᱮᱱᱟ ᱾

0: Söylenesi be bana!
1: Tuyla kalaya! Tuyla kalaya! Tuyla kalaya!
0: Söylenesi be bana!
1: Kalaya!
2: Tuyla kalaya!
3: Madhudas?
0: Yes, sir.
3: Madhudas, kol ko sulana manchi ko bano. Kako sulana mandi do, bug de tam ko pe, ru ko pe.
0: Angrej kolo sulan pe. Kape sulan rato, bug itile rupia. Sulan rato pe kale rupia.
1: Angrej punis ta kolo, chulao kale sulana. Chulao kale sulana.
2: Kalea, kale sulana.
1: Kale sulana, gujoro le kale sulana.
2: Kalea.
1: Kale sulana.
0: Kui ko ano, kuwa ko,
4: राजा को हारी गुआरी लेकाते लॉर्ड हेस्टिंग्स 14 मार्च 1821 दिलंग मिदनापुर संबलपुर बांकुरा कोटको हेते सिपाही को आगू को तिया हुकुम एम किरा सिपाही को हुजू यन रे कर्नल रिचार्ड आ नेनल मेट रे अप्रैल महीना 1821 रे होड़ो दिसुम होड़ो को गादा गादी तन को गो एकेट कुआ एसु पूरे वाको को उरुप किडा उरी मेरम बाबा विति को इडी किरा ब्रिटिश सिपाही कुआ बूंदू राइफल समनांग रे उलगुलान होड़ो कुआ सर आ सर का टिकयो याना होड़ो को बोरोते को लिपुर लिपुर चबायना होड़ो दिसुम रेन साबिन पीढ़ी रेन मुंडा मान की ओंडो होड़ो को सुला नमन लगे को तियरे याना
0: सर कोल को सोलन लगे को तियरे याना
3: वेरी गुड कोल को गुलामन बे कुआ राजपुतार एन जी में कुआ मरुदास कोल को सुला नमा समझाना मांगता है
0: यस सर आई सो सरंडर एन सिंह कुले लेका मीना होड़ो को राजा लेका टाइकेन को मुगल मराठा कुआ जारी रियो का टाइकेन होड़ो को राजा जारी रियो का टाइकेन होड़ो को चुईलो मालगुजरी का एम के होड़ो को ना दो अंग्रेज कुआ पोर्जा को पे बाइये ना मालगुजरी पे एमेते हो बावा कोल को लुतुर कीचर कहते सोलानामा आई में पे तिसिंग ताए थे आपे अंग्रेज सरकारा पोर्जा को पे हो बाया ना इनामेंते अंग्रेज कुआ काजी मनातिंग पे आर पंचाय में पे होड़ो दिसुम रे एटा जाति को टाई इचिए को पे ओंडो हुजू सेनो इचिए को पे आपिया आतुरे एटा जाति को टाई इचिए को पे एटा जाति कुआ काजी एतो पे राजा कोलो आलपे लगातिया आलपे गोए कुआ
4: 1821 आयरते होड़ो दिसुम रे एटा जाति को एसु कोम को टाई किना एटा जाति को हुरा काको उजु सेने इचिए को टाई किना नेले काते 3 मई 1821 दिलंग होड़ो दिसुम रेन साबिन पीढ़ी रेन मुंडा मान की ओंडो होड़ो को अंग्रेज सरकार आ मोया हुकुम लो को सोला नमायना ओंडो अंग्रेज कुआ पुर जको बाईयना

0: ᱟᱭᱢᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱭᱠᱟᱱᱟ ᱜᱩ ᱠᱚᱞ ᱩᱨᱜᱩᱞᱟᱱ ᱰᱚ ᱚᱞᱛᱟᱨᱟᱠᱤᱧ ᱰᱚᱜᱮ ᱥᱤᱝ ᱠᱚᱛᱮᱠᱤᱧ ᱮᱞᱟ ᱡᱚᱠᱟᱞᱠᱟ ᱪᱚᱴᱮ ᱡᱟᱜᱟᱨᱟᱵᱚ ᱟᱭᱚᱢᱤᱭᱟ
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: आयम का तेकना वो छोटे जगह इला मी दुरंत ब्रश के लेन वहाँ दुरंत तना किन बिरसिंग हेम्ब्रोम डो अकिने जुड़ी को

अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अकड़ा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:00

श्रोता, कार्यक्रम विविधा में हम कई विषयों पर जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, समसामयिक विषयों पर। जयंती, सप्ताह, दिन, दिवस, पखवाड़ा, इन सभी विषयों पर हम जानकारी कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। आज मदर्स डे है, मातृत्व दिवस। तो आज के इस खास मौके पर आप सभी श्रोताओं का ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम सभी जानते हैं श्रोताओं, विश्व की सबसे सुंदर रचना हमारी माँ होती है। हमारी माँ बहुत ही सुंदर होती है। इस दुनिया में ईश्वर की सबसे खूबसूरत और कोमल रचना है हमारी माँ। माँ हमारी कितनी अहमियत रखती है ज़िंदगी में, ये जब एक नारी माँ बनती है तभी वो एहसास करती, वो अनुभव करती है कि माँ क्या चीज़ होती है, माँ कितना हम लोगों के लिए सोचती है, माँ हमारे लिए कितना ही ज़्यादा अहमियत रखती है हमारे जीवन में। माँ कितना सुंदर से जीवन को संवारती है बच्चों का, माँ का कितना कर्तव्य है, कितना सोचती है, कितना ध्यान रखती है, हर एक कार्य को माँ एकदम बारीकी से करती है। कभी कब किसको कौन सा क्या चाहिए चीज़, सब का ख्याल रखती है। अपना ख्याल रखना ही भूल जाती है, कब उसे खाना है वो पता नहीं, लेकिन बच्चे को, घर के अन्य सदस्यों को कब क्या खाना देना है, कब उसे क्या चाहिए, ये सब ख्याल रखती है माँ। इसीलिए तो दुनिया की सबसे खूबसूरत रचना है। भगवान भी माँ, हमारे कृष्ण जी कहते हैं, परमात्मा के बाद, ईश्वर के बाद यदि कोई इस दुनिया में ईश्वर है, आत्मा से परमात्मा का मिलन है, तो वो है हमारी माँ। वाकई में माँ हमारी आत्मा है, सुंदर। इसीलिए तो भगवान ने माँ को इतना सुंदर निस्वार्थ भाव उनमें डालकर, एकदम कोमल सुंदर तरी मनोभाव को रख के रचना किया है। माँ का प्यार किसी भी, कहीं भी, किसी भी तरह का शर्त के जरिए आगे नहीं रहता। निस्वार्थ भाव से माँ प्यार करती है, करुणामयी है। इसीलिए तो निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है, करुणा की सागर है माँ, करुणामयी है माँ। माँ हम सबों को शक्ति प्रदान करती है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। एक सच्ची माँ, एक सुंदर सी माँ, हमारी माँ कितनी अच्छी शिक्षिका होती है ना, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, सोना है, सब चीज़ सिखलाती है। जब माँ, एक नारी माँ बनती है, तब ये अनुभव करती है, एहसास उनको होने लगता है, मेरी माँ भी तो ऐसा करती थी, सुंदर सी। सच में ना, माँ कितनी अच्छी होती है बच्चों के लिए, हिम्मत, और बच्चों के दिलों में हिम्मत बढ़ाती है,

आगे कैसे बढ़ना है ये बताती सिखाती है, कैसे अपनी पहचान बनाए रखनी है ये माँ बताती है। माँ ममता की मूरत है जो बच्चों के भावों को अनकहे ही समझ जाती है। माँ बच्चे एकदम हाँ बस यूँ खोला मुँह कि माँ जान गई कि मेरा बच्चा को क्या चाहिए, मेरा बच्चा क्या चाह रहा है। सच में ना कितनी अंतर्यामी होती है ना माँ। सच्ची का माँ हमारी माँ होती है, उसका कहीं कोई डिफिनेशन उसके बारे में परिभाषा हम दे ही नहीं दे सकते हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं कह सकूं। जैसे कहते हैं ना परमात्मा के बारे में जितना भी कहा जाए कम है, समुद्र सा एकदम गहरा और विशाल से भी विशाल माँ की भाव है, माँ की महिमा है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसलिए माँ इस सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है। माँ के निस्वार्थ प्रेम और समर्पण को हर कोई हम लोग सुंदर तरीके से मातृत्व दिवस के रूप में, मदर्स डे के रूप में मनाते हैं, ताकि हमारी माँ को कम से कम ये एहसास तो, यूँ तो देखा जाए माँ को हर दिन हम प्यार करें या ना करें, लेकिन माँ के आंचल से प्रेम ममता करुणा कम नहीं होता। माँ प्रेम करती ही रहती है। जब हम माँ को इजहार करते हैं माँ तो कितनी अच्छी है, माँ तो कितनी भोली है, तो कितना ख्याल रखती है, माँ तो सुंदर है, तो हमारे दुनिया के सबसे अनमोल धरोहर है, ये कहकर जब मैं माँ से गले लगाती हूँ तो माँ गदगद हो जाती है, आँखों से आंसू भर आती है माँ की और कहने लगती है हाँ रे तू माँ बनेगी तो पता चलेगा माँ क्या होती है। सच में ना माँ क्या होती है, जब माँ बने तभी माँ जाना जाता है। एक पिता जब पिता बनते हैं तब उसे पता चलता है पिता का क्या ड्यूटी बनता है, पिता किसे कहते हैं। यही है हमारे जीवन में अभिभावकों का स्थान। बहुत सुंदर आज के मदर्स डे में सभी माओं को मैं सतकोटि नमन करती हूँ और ये इस देशभक्ति गीत से कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 7 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
3: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
4: तीन नाले बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मरन बेटा क्रांति बेसरा आले नवागे नेहर में ना बले नवा नुकान परिस्थिति रे बले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहा कि हम बले रुड़ तो बन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
5: वरना मंगलोरा को गांव बरगरा

0: आड़की थाना, तो जंगल गया है तो आऊ का कहाँ बना है वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना, मैंने जिंदा है कोई को नाम सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
1: नाम है रंगबला देवी गाँव बारह हत्तो तो कहाँ तो घर आए ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
2: तुम लोग बुरा मिसिंग काम सोए अनिता काम सोए भरूपा ऐसे ना करना ऐसे दुकुरा मिना न्या यापा मैं रियल तपा मैं रियल वाह बेटा निका
3: अन्याम तुम लोग बुंबई कोड़ा पटन तुम लोग रे कोड़ा अन्याम हम लोग कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मुनि में उड़ी ने बागिया तो किन्हें दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तमे दुर्गम को यहाँ तबो जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल मिया
4: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लेंगे जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिटा हुरा इनका अली आया नु तुम कहीं ना मिल आप ही लेते ना।
5: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित।
3: इस विराम के बाद श्रोताओं पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम विविधा में। और अब श्रोताओं कुछ बातें करते हैं मिशन वात्सल्य योजना पर। हम सभी जानते हैं कि परिवार सिर्फ एक रिश्तों का एक तत्व नहीं है, ये प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे ज़िले में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, या जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में है, ऐसे बच्चों की प्रक्रिया में शामिल के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य योजना चलाई गई है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहते हैं। ये योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखरेख की आवश्यकता होती है और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकता अनुसार या 18 वर्ष की आयु पूरे होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित योजना के तहत लाभान्वित किया जाता है। आइए जानते हैं पोस्टल केयर या पालन पोषण देखभाल क्या है। ये गोद लेने की प्रक्रिया नहीं पर एक अस्थायी अवस्था है जहां बच्चा प्यार सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। जी हाँ श्रोताओं, ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, उनको आवश्यकता है एक माता पिता के लिए, तो माता पिता की जो भूमिका है वो आप दे सकते हैं। आप सक्षम हैं, इच्छुक हैं तो आप ऐसे बच्चों को गोद ले सकते हैं और उन्हें खुशियाँ शिक्षा पालन पोषण दे करके अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता के आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, माने दोनों माता पिता की जो उम्र है वो दोनों मिलाकर 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी कम से कम 35 वर्ष तथा दोनों का सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती है। यदि पुरुष अकेले रहते हैं, उनके साथ माता नहीं है, माँ वाइफ नहीं है, पत्नी नहीं है, तो उसे बालिका नहीं दी जा सकती है। अगर आप पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है, पालक माता पिता शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, परिवार हर बच्चे का अधिकार आप ले सकते हैं, तो ये ज़रूरतमंद बच्चों को हाथ बढ़ाए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दे। इस योजना के तहत ज़रूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। तो श्रोता, अधिक जानकारी के लिए आप जिला बाल संरक्षण इकाई में जाकर आप फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मैं बता रही हूँ, फ़ोन नंबर है 9955131364995513164, और एक नंबर है 9090700489 9090700489। इस नंबर पे आप संपर्क करें या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय तीसरा तल्ला चाईबासा में आकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जिला बाल संरक्षण इकाई पश्चिमी सिंहभूम द्वारा ये जो जन सूचना जारी किया गया, मैं आप सबों के पेश रखी मिशन वात्सल्य योजना पे। तो इसी के साथ हमारा कार्यक्रम विविधा अब यहीं पे हम संपन्न करते हैं। पुनः होगी मुलाकात अगले कार्यक्रमों में, तब तक के लिए राधा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पे। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रम। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो,
1: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: हे गाइस, कांग्रेचुलेशंस, आज तो पार्टी चाहिए।
8: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
5: आइडिया, यही करते हैं पार्टी,
7: पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
7: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गोड्डा में कई सड़कों का किया शिलान्यास, ढांचागत संरचना और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, धनबाद

0: में पुलिस अपराधी गठजोड़ और विदेशी कनेक्शन की जांच एनआईए से कराने की मांग। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके में कल से राज्य स्तरीय दो दिवसीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन, कृषि मंत्री शिल्पी नेहातिर की भी होंगी शामिल। राज्य संग्रहालय में इंडिया इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में देश भर के कलाकारों ने किया अपने हुनर का प्रदर्शन। कलाकारों को बेहतर मंच देने का प्रयास। और झारखंड स्टेट सब जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप में रांची की टीम ने पूर्वी सिंहभूम को हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना को 9400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आधुनिक ढांचागत संरचना के विकास पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर अग्रसर है और राज्यों के विकास पर बल दिया जा रहा है।
1: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा।
0: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज गोड्डा के मेहरमा प्रखंड अंतर्गत धोरीचक से कुमारडीहा तक पथ सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने बास्किता पथ और बेनिदास भुस्का तक बनने वाली सड़क की भी आधारशिला रखी। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। ग्रामीण विकास मंत्री ने इस दौरान जन समस्याएं भी सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। श्रीमती सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ढांचागत संरचना और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दे रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद में पुलिस अपराधी गठजोड़, संगठित वसूली नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय अपराध संचालन तंत्र और संभावित विदेशी कनेक्शन की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। श्री मरांडी ने इसे लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि हाल ही में धनबाद में एक कुख्यात अपराधी द्वारा विदेश से सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग दिनों में जारी वीडियो ने पूरे राज्य की प्रशासनिक विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्री मरांडी ने इस मामले को लेकर धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार को तत्काल प्रभाव के साथ पद से हटाने की मांग भी की है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना गिरिडीह जिले के गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिले के तोलडी के रहने वाले आमिर हसन को भी इस योजना का लाभ मिला है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है।
2: एक महीने से मेरा पेट में दर्द था, वो पेंडिस हुआ था, जो पैसे के ना कारण से हमने अपना इलाज नहीं कराया, लेकिन आयुष्मान भारत के द्वारा सरकार ने ये जो दिया, तो इसी के लिए हमने अपना ऑपरेशन करवाया और इसलिए हम भारत सरकार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
0: राजधानी रांची के काके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कल से दो दिवसीय राज्य स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री शिल्पी नेहातिर की शिरकत करेंगी। कार्यक्रम के पहले दिन जिलावार आकस्मिक योजनाओं पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। वहीं दूसरे दिन 12 मई को खरीफ पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूल में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद, कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। हजारीबाग जिले में आज हुई दो अलग अलग दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पहली घटना गोरहर थाना क्षेत्र में हुई, जिसमें सब्जी लदे एक अनियंत्रित वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें वाहन चालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना गोरहर गांव के समीप हुई, जिसमें चार वाहनों की एक दूसरे से टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@yayanewsandalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@yayanews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल यायर न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा की वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्वा

0: शर्मा ने आज असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की और राज्य में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश किया। इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने हिमंत बिस्वा शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया।
1: शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से आगे चलकर अगले 5 वर्षों के लिए असम की जनता को भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार समर्पित भाव से मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करेगी और हिमंत बिस्व शर्मा जी उसको धरती पर असम की जनता के लिए पूरी ताकत से लगाएंगे।
0: श्री शर्मा 12 मई को असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद रहेंगे। गढ़वा में पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सफलता हाथ लगी है। गढ़वा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 देशी कट्टा, कारतूस, मोबाइल और 2 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। ये अपराधी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इसी क्रम में अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। खूंटी पुलिस ने जिले के रनिया थाना क्षेत्र में आज छापेमारी कर लगभग 8 लाख रुपए मूल्य का डोरा जब्त किया है। तोरपा SDPO क्रिस्टोफर केरकेट्टा ने बताया कि गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने एक मालवाहक वाहन को जब्त किया है और फरार तस्करों की तलाश जारी है।
2: ये रानिया और कमडरा बॉर्डर में करीब 3-4 बजे एक ट्रक निकल रही थी तो थाना प्रभारी और अन्य की सूचना से एक ट्रक पकड़ाया है। उसमें डोडा और कुछ भूसी है जो गाय के लिए दिया जाता है, उसे ले जा रहा था। अभी एग्जैक्ट तो नहीं जान रहे हैं लेकिन करीब 50 तो होगा।
0: रांची स्थित राज्य संग्रहालय सभागार में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में देश भर आए कलाकारों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की आयोजक मोनिका डी ने बताया कि इस डांस फेस्टिवल में देश के 18 प्रदेशों के 300 से अधिक कलाकारों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि ये नृत्य न कार्यशाला कलाकारों को एक बेहतर मंच देने की कोशिश है।
3: मैं IADF का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं कलाकारों को मंच प्रदान कर सकूं। कलाकारों के लिए मंच की बहुत आवश्यकता होती है। ऑल ओवर द इंडिया यहां कलाकार है। अनफॉर्चुनेटली बाहर से भी कलाकार थे। यहां चेन्नई, बेंगलुरु, जलपाईगुड़ी, कोलकाता, जमशेदपुर, रांची, झारखंड सभी जगह से हमारे यहाँ कलाकार है।
0: झारखंड स्टेट सब जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप में रांची की टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पूर्वी सिंहभूम में आयोजित इस चैंपियनशिप में रांची की टीम ने मेजबान टीम को 4 के मुकाबले 5 अंकों से पराजित कर कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। भारतीय महिला की रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। चीन के शंघाई में आयोजित दूसरे चरण में आज झारखंड की दीपिका कुमारी और अंकिता भकत तथा कुमकुम मोहद की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज दोपहर बाद गरज के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में 16 मई तक बारिश का पूर्वानुमान है। इस अवधि में राज्य के कई इलाकों में तेज हवाएं चलने की और वज्रपात की भी आशंका है। हालांकि आने वाले दिनों में तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गोड्डा में कई सड़कों का किला शिलान्यास, ढांचागत संरचना और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। धनबाद में पुलिस अपराधी गठजोड़ और विदेशी कनेक्शन की जांच NIA से कराने की मांग। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय काके में कल से राज्य स्तरीय 2 दिवसीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन। कृषि मंत्री शिल्पी हातिर की भी होंगी शामिल। राज्य संग्रहालय में इंडिया इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में देश भर के कलाकारों ने किया अपने हुनर का प्रदर्शन। कलाकारों को बेहतर मंच देने का प्रयास और झारखंड स्टेट सब जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप में रांची की टीम ने सिंहभूम को हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: दीदी नौकरी लग गई।

0: ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
0: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
0: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: पर दी,
0: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
0: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
5: ओह लवली, वेल डन।
4: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
5: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगी हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता।
1: भारत सरकार द्वारा गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के तहत पक्का मकान दिए जाने का असर धरातल पर दिखने लगा है। गिरिडीह के गरीब प्रधानमंत्री आवास पाकर बेहद खुश हैं और भारत सरकार के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं।
2: मेरा नाम रमेश कुमार दास, वार्ड नंबर 3 अंदूडी जरडी का निवासी हूँ। मैं पहले मिट्टी का मकान था, लेकिन जब मोदी जी का आवास मुझे मिला तो मैं इस आवास को बना पाया हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि इस मकान में बहुत अच्छा से मैं रहता हूँ। इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से प्रणाम करता हूँ।
1: डीसी राम निवास यादव ने जिला वासियों से स्व जनगणना में भाग लेने की अपील की है।
3: आम नागरिकों के लिए स्व गणना की सुविधा एक विशेष पोर्टल के माध्यम से दिनांक 1 मई से 15 मई 2026 तक उपलब्ध कराई जाएगी। इस हेतु एक पोर्टल se.census.gov.in बनाया गया है, जो 1 मई से चालू होगा। आमजनों से आग्रह है कि वे सेल्फ इनोग्रेशन के प्रति जागरूक रहें, अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को भी इसकी जानकारी दें तथा इस महत्वपूर्ण अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें।
1: गिरिडीह शहरी क्षेत्र को साफ सुथरा रखने के लिए नगर निगम जन जागरण अभियान चलाएगा। उपनगर आयुक्त प्रशांत लायक ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती से रोक लगाने का निर्णय लिया है।
4: अवेयरनेस के लिए जो कदम उठाना है हम लोग को, जैसे हमारा कांक्षा कंपनी है, हमारा निगम के कर्मी है, सभी को निर्देश देने का है कि हम लोग उसको निर्देश दें ताकि, और पॉलीथीन का सबसे बड़ी समस्या है यहाँ गिरिडीह में पॉलीथीन का, उसको लेके भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो दुकानदार हैं उस पर हम लोग पहले अपील करेंगे कि वो ना इसका उपयोग ना करें, और उसके बाद भी यदि कोई तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
1: भारत सरकार किसानों के उत्पाद बेचने के लिए उन्हें उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है। नाबार्ड ने जमुआ प्रखंड में हाट शेड का निर्माण किया है, जिससे स्थानीय लोग और किसान काफी खुश हैं।
5: हमारा नाम छत्तरधारी मातो सेवा निधि शिक्षक, जो बरसात में हम लोग सब भींग जाते थे, साग सब्जी हम लोग का भींग का बर्बाद हो जाता था। किसी तरह से दौड़ के मंदिर जाते थे, वहाँ भी मंदिर घुसने में थोड़ा दिक्कत होता था, सूख प्याज लेके जाना मुश्किल होता था। अभी सरकार के द्वारा जो बन गया, हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग को रहने का बैठने का सारी व्यवस्था यहाँ कर दी गई है।
1: पिछले 15 दिनों से मौसम के रुख में आए बदलाव से मई महीने में ठंड का लोगों को एहसास हो रहा है। प्रत्येक दिन हो रहे बारिश से तापमान लुढ़क गया है और ठंडी हवा चलने से लोगों को गर्मी से मुक्ति मिल गई है। इधर बारिश और आंधी से गिरिडीह में जान माल का भी नुकसान हुआ है। इस बार आम फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह।

अभी आप सुन रहे थे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

अभी आप सुन रहे थे जिले में आजकल आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से FM के 101.7 MHz पे। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम के साथ मैं राधा नमस्कार और मदर्स डे पे ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मदर्स डे है श्रोताओं, सबसे पहला गीत माँ को समर्पित हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म हम साथ साथ हैं। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति, हरिहरन, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक। इस गीत को सुनना चाहा है न्यू कॉलोनी निमडी चायबासा से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, अनीश, अंश, अंशु, मुन्ना, बड़ा निमडी, छोटा निमडी चायबासा से बाबू राम, शांति देवी, रोहन कुमार, कोमल कुमारी, ऋतिक कुमार, और आप हैं वसुंधरा कॉलोनी सेंट टोला चायबासा से भोलाराम मधुर, विनोद कुमार पवन, मीना पवन। आमला टोला चायबासा से इसी गीत को सुनना चाहा है गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद। बड़ा निमडी चायबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार, शुभम कुमार। आप सबों की पसंद पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हम साथ साथ हैं इसका ये सुंदर सा गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 870-001-4242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 7 करोड़ से अधिक लाभार्थी

0: व्यक्ति जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: आले नवागे नेहर में ना बले नवा नुकान परिस्थिति रे बले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहेंगे आम बले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोर आए को गांव बरगरा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ मना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रणबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आई ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखंड बात हो जाए
6: मितुम बुरम सिंह तमसोय अनिता तमसोय भरूपा सिन्हा कना ऐसे दुकुरा में ना आया या पाम ना इरिया तो पाम ना इरिया वाह बेटा मिका
7: अन्याम तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुमरे कोड़ा अन्याम हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मैंने मैं उड़ी उड़ी ने बागिया तोड़ के जम दोनों आसे यार ती कोलो पुलिस कोलो इन्हीं लड़ाई चलाओ तो मैं दूर रन गई यहाँ तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेरे लिए
8: अलिंग मुनि सुरेन तो ऐसे आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया न तुम कहीं ना मिले आप ही लेता ना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख दो बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
9: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम आपकी पसंद में, और अब सुनते हैं फिल्म दो मत वाले का ये सुंदर सा गीत। संतोष आनंद के गीत है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, आवाज़ें हैं मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णमूर्ति की। इसको सुनना चाहा है इस गीत को चांडिल हारूडी गांव से तुलसी महतो, कल्पना महतो, मनोरमा महतो, मनमोहनी महतो, संगीता महतो, संतोषी महतो, दीनबंधु महतो, गांव पोंडाकाटा से इसी गीत को सुनना चाहा है नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती महली, सुहानी महली, संजय सोरेन, नंदिनी महली, बड़ा बम्बू गोपालपुर से संतोषी महतो, जय महतो, बड़ा बम्बू सुपाई साई से इंद्रजीत ताती, मधुरानी ताती और दृष्टि, देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा ताती, प्रकाश ताती, ललित प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक और श्यामदेव नायक और देवेन बाबू, गांव गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बासंती अनु, रमेश वनवाली, सिद्ध कुमारी और पूजा एवं बेसरा परिवार, गांव चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत,

एक बार कहो, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं बापी लहरी सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में। महेंद्र देसाई की रचना है, बापी लहरी की संगीत है। इस गीत को सुनना चाहा है रिग्नी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, लवई से गुलाब दास, मानिकपुरी, दंतरंगी से भागवत वर्मा, और आप हैं खरसवा गांव नारायणपुर से। सुनना चाहा है खेतो मोहन साहू, नायडू महतो, बाबा कैलाश, और बड़ा आमदा पंचायत से प्रधान माटी सोय, और कुल्लू साहू, नीतू साहू, श्री मोतीलाल साहू और सभी साहू परिवार के सदस्य। और इसी गीत को सुनना चाहा है बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गवेनकर, धीरज सब्बा सेरे। आप हैं इसी गीत को सुनना चाहा है कासम कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से, यूनिस खत्री, सफ़ी खत्री, इदरिस खत्री, नूर मोहम्मद खत्री, कासिफ हासिम, इरफान मीना। और इसी गीत को सुनना चाहा है लक्षणपुर से जीवन लाल रजक, रामजी साहू, बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, भटगांव बलोदा बाजार से राम दुलार साहू, नीलिमा साहू। आप सबों की पसंद पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म एक बार कहो का ये सुंदर सा गीत।

0: निशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर

इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम आपकी पसंद में। आप सुन रहे हैं श्रोता आकाशवाणी की चायबासा केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। और अब इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में, फिल्म नगीना का गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनना चाहा है राजनाथ गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी। इसी गीत को सुनना चाहा है सरायकेला गांव कीता से राधा कृष्ण गोप, सुनीता गोप, उमा गोप, गीता गोप, रीता गोप, सरस्वती आराध्या, अमित, सुमित, अंकित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, विक्की विक्की शुभम, विनोद गोप, राजू गोप, राजन गोप, माहिर गोप। और आप हैं रेलवे रोड गंज ढुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, शेख मोहम्मद फारूक, अब्दुल सत्तार अंसारी, डीएच बच्चन। इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, सुमन ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, यांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर। जेल रोड रायगढ़ से इसी गीत को सुनना चाहा है रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी। भाटापाड़ा दत्नेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा। महुलडिया सोनवा से

नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रवि बारी, बंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गीतेश, अनु, तनु, डिस्को महतो, और मेन रोड सुनवा से इसी गीत को सुनना चाह है गुरुचरण नायक, अनुसुईया नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक प्रधान, तनुश्री प्रधान, लील पानी प्रधान। आप सबों की पसंद पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नगीना का गीत मोहम्मद अजीज की आवाज़ में।

फिल्म नगीना के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं पे हम समाप्त करते हैं।

हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पे रात्रि के 8 बज चुके हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। नमस्कार। पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम। आवाज है सोनू निगम की और इस गीत को सुनना चाहा है शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजू लता, आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। इसी गीत को फरमाइश किया है।

सुनने के लिए सरायकेला पाड़ापुर देसावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम शिवाजी मुंडरी सुरुमणि मुंडरी हीरामणि हेमंती डोबरो साजन सिद्धेश्वर पाड़ापुर शिवाजी डोबरो मुकेश कुशल मुंडरी जानुम सिंह मुंडरी सिद्धिपो सोना बाबू सोना एफ एम शिवा मुंडरी गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदीप मिका बलविंदर विरक जैतक विरक मिका विरक जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया अंजल भाटिया नवनीत भाटिया पप्पी भाटिया आमजुड़ा पोखरिया मालुका से शिवा गोप प्रेमा गोप संगीता शिल्पी लिपि दीपाली गोप पुणे से पंकज बड़ोदे आर्या आदि बीटी बड़ोदे चंद्रप्रभा बड़ोदे इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है गांधी चौक बाड़मेल राजस्थान से बबलीश पवार डैनी पवार मास्टर मनीष आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम का ये सुंदर सा गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: और अब कार्यक्रम रजनीगंधा का ये अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म निगाहें से। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडेकर की।

आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। इस गीत को सुनना चाहा है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज सहा, कोटवा, नारायणपुर, बाबा पट्टी, बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, शेरपुर कला, गाजीपुर से अवधीश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय, दुबिया नवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है ज़िला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक। औरंगाबाद से राजेश रामले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश और आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरभ शर्मा। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है चंडीगढ़ से सतीश अनिजा, बिमला अनिजा, तालुका बोहरानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजू बाई, तुरबू परु, मुबारक वारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर वारेकर, भोकरी महाराष्ट्र से अरशद तड़वी, आरिश अरसनाल, यूशुन तड़वी, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहत शिला बुहरानपुर से मुसफ़र खां तरवी, जरीना तरवी, मुबारक तरवी, परवेश तरवी, बिटिया रोजमीन तरवी, तैमूर तरवी, समस्त तरवी परिवार। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म निगाहें का ये सुंदर सा गीत।

निगाहें इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडेकर, अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज़ों में। दिल तुझको दिया इस कार्यक्रम का ये अगला गीत लता मंगेशकर के स्वर में हम आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगरा, बबीता बोध, निखिल कांगरा, अंकित कांगरा, साहिल कांगरा, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, साहिल, लक्षणपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक और भाटापारा से भवेंद्र कुमार साहू, लक्की हर्षित, सुमित्रा साहू, आदर्श नगर भलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मिंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, निबान शर्मा, यूपी से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद, बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद, भलोट कैंप पंजाब से इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है सतीश मिगलानी, सीमा, शाइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया, अनमोल, धर्मपाल, महावीर,

रमेश मिंगलानी। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल तुझको दिया का ये सुंदर सा गीत।

आप सुन रहे हैं श्रोताओं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से फिल्म संगीत फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। और अब इस कार्यक्रम का ये अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडेकर कविता कृष्णमूर्ति के आवाज़ों में आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है सौदागर। इस गीत को सुनना चाहा है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धा नंद आर्य अभय नंद आर्य परमानंद आर्य पंकज प्रमोद रोहित और मोहित। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है जेल रोड मथुरा से वशीम आसमा बेलदार अकरम आसमा बेलदार अल्लाह आसमा बेलदार बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम सफुद्दीन डोम कुमारी वली डोम कुमारी डब्लू डोम सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा सोनम थापा रेशमा थापा आदिबा थापा कुचाई बिद्री से केपी सोय सरिता दुर्गामती रेशमी राजकुमारी विशाल मुन्ना और शन्नी सुराबेरा से गांव सुराबेरा से वासिंग सरदार धनी सरदार कमल सिंह सरदार सुकमती सरदार रमेश अंशु और बीरू सरदार दलाई केला पदमपुर जिला सरायकेला से लक्ष्मण सोय विरसा सोय राज सोय अनीता सोय मनीषा पूनम सोय समस्त सोय परिवार दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा कोमल मेहरा किरण मेहरा कपिल मेहरा कुणाल मेहरा आप हैं कस्बा बड़ाला जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर प्रियंका जय प्रकाश राहुल नूर अमन सिमरत गुरकीरत गुरशब्द राहुल। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सौदागर का ये सुंदर सा गीत।

और अब सुनते हैं फिल्म ताल का गीत अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज़ों में। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है बरेली कैंट रेलवे केविन के पास से विनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला भाई, नशीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आशमा सालिया, शोएब खान, पुत्रा मुस्तवा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। और इसी गीत को फरमाइश किया है सुनने के लिए कोट रोड बागपत से यूसुफ आज़ाद, वशीला शाहिल आज़ाद, अंजुम नाज, कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, नीलू, रितु सिंह, ऋषभ सिंह, कनेला मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पला, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है ओल्ड निशनल्स ग्रुप राजनगर मधुबनी से कुशवेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता, श्रीधि गुप्ता, जीवन भाई, एश पार्क पीली कॉलोनी लखनऊ से मुकेश रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता, पंखुरी गुप्ता, राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन, मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यांशी गुप्ता, कोमल गुप्ता, मेनका गुप्ता, माधवी साध्वी, तन्मय, राज और गुनगुन। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म ताल का ये गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इसके साथ ही फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस कार्यक्रम से अब हमें दीजिए इजाज़त। अगले कार्यक्रमों में पुनः होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
1: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटिबेल्लूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
2: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहाँ तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अतिरिक्त निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन्द्र तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा सम्पन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
3: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं जयपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heat wave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving

0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के शहर हैदराबाद में बुनियादी ढांचे और सनअत के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा, जिनकी लागत तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए है। इन प्रोजेक्टों का मजमू मकसद रियासत को मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा मरकज बनाना, कनेक्टिविटी को मजबूत करना, रोजगार के मौके पैदा करना, लॉजिस्टिक्स की इस्तेदाद में इजाफा करना, हिफाजत में इजाफा करना और लोगों को सफर में बेहतर सहूलियात फराहम करना है। वज़ीरे आज़म मोदी ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि भारत मरकज की तरफ से किए गए इकदाम की वजह से मगरबी एशिया की महाजराई से उभरने वाले तवानाई के बहरान से मुअस्सर तौर पर निमट रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन के इस्तेमाल में जिस तहम्मुल से काम लिया गया है वो वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दरामद की गई पेट्रोलियम मसनूआत को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे गैर मुल्की ज़र मुबादला की बचत और जारी महाजराई के मनफी असरात को कम करने में मदद मिलेगी।
1: सिक्योरिटी का क्या महत्व है ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है, इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है पेट्रोल डीजल गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
0: जनाब मोदी ने कहा कि आज भारत इस्लाहात के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और जदीद तरीन बुनियादी ढांचे की तामीर कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि वो तेलंगाना में हर कुनबे को यकीन दिलाना चाहेंगे कि मरकज आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए और ज्यादा रफ्तार के साथ काम करेगा।
1: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है।
0: आज जिन बड़े प्रोजेक्टों का आगाज किया गया उनमें वरंगल में पीएम मित्र पार्क भी शामिल है, जिस पर तकरीबन 1700 करोड़ रुपए की तखमीना लागत आएगी। भारत के तारीखी इम्तियाज को एक आलमी इक्तिसादी ताकत के तौर पर याद करते हुए, जब कपड़े की सनतें यकसर तब्दीली लाने वाला रोल अदा करती थीं, वज़ीर आज़म ने मौजूदा इकदाम के जरिए इस अहम शोबे को नई जिला बख्शने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया।
1: आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, इससे यहाँ हजारों हजार नए रोजगार बनेंगे और तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। मैं तेलंगाना की जनता को इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में मुमकिना सैलाब और शदीद गर्मी की सूरत हाल से निमटने की तदाबीर के तौर पर एक जायजा मीटिंग की। नई दिल्ली में आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब शाह ने मरकजी हुकूमत की एजेंसियों की इन हालात से निमटने की तैयारियों का जायजा लिया। इसके अलावा पेशगी वार्निंग सिस्टम, वसाइल की फराहमी और मुख्तलिफ एजेंसियों के दरमियान आपसी तालमेल की जरूरत पर जोर दिया, ताकि किसी भी जानी या माली नुकसान से मुअस्सर तौर पर निपटा जा सके। वजीर मौसूफ ने मुल्क भर में तवील मुद्दती सैलाब का भी जायजा लिया, जिसमें अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का तहफ्फुज़, दरिया के इंतजाम के इकदाम और पेशगोई में साइंसी पेशरफ्त शामिल हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि आईन और अदलिया ने भारतीय जमहूरियत की बुनियाद को मजबूत बनाने में अहम रोल अदा किया है। जनाब शाह आज शाम नई दिल्ली में दो किताबों के इजरा के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। ये किताबें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तसनीफ की हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आम आदमी के यकीन, समाज की कारकर्दगी और मुल्क के किरदार का इजहार इंसाफ के एक मजबूत निज़ाम से होता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने एक समाज के तौर पर अपने इदारों में लोगों का एतमाद कामयाबी के साथ बरकरार रखा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पूरे मुल्क के आवाम का ये यकीन है कि अगर कोई नाइंसाफी होती है तो आईन मौजूद है, अगर हुकूक पर कोई हमला होता है तो अदलिया के दरवाजे खुले हैं, और अगर किसी कमजोर शख्स की आवाज दबाई जाती है तो अदालतें इनकी आवाजों को यकीनन सुनेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। प्रदेश के वजीर

0: योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी काबीना में 6 मजीद वजरा को शामिल किया। इसके अलावा 2 वजराए मुमलिकत को तरक्की देकर उन्हें भी काबीनी वजीर आजादाना चार्ज का ओहदा तफवीज किया गया है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने जन भवन लखनऊ में आज नए वजरा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इन नए वजरा की शमूलियत से 403 रुकनी उत्तर प्रदेश असेंबली में वजरा की तादाद 60 हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: रियासत में आज होने वाली काबीना की इंतहाई मतवक्के दूसरी तौसी में पार्टी के साबिक रियासती सदर चौधरी भूपेंद्र सिंह और मनोज पांडे को काबीना वजीर बनाया गया है। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही फतेहपुर में जिले के खागा असेंबली हलके की नुमाइंदगी करने वाले कृष्ण पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से बीजेपी एमएलए कैलाश सिंह राजपूत और अलीगढ़ की खैर असेंबली सीट से एमएलए सुरेंद्र दिलेर को वजीर मम्लकत बनाया गया है। कानून साज काउंसिल के रुकन हंसराज विश्वकर्मा को भी वजीर मम्लकत बनाया गया है। इसके अलावा वजीर मम्लकत अजीत पाल सिंह और सोमेंद्र तोमर को तरक्की देते हुए दोनों वजरा को आजादाना चार्ज तफवीज किया गया है। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि पानी का तहफ्फुज़ एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार करना चाहिए क्योंकि इसी के जरिए विदर्भ के किसानों में खुदकुशी के वाकयात को रोका जा सकता है, निज इलाके के गांवों को पानी की मौसर फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। जनाब गडकरी ने विदर्भ खित्ते में पानी के तहफ्फुज़ के लिए सरगर्म तंजीम पूर्ति सिंचल समृद्धि कल्याणकारी संस्था की जानिब से नागपुर में सिल्वर जुबली तकरीबात के सिलसिले में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। तिजारत व सनअत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज योम मादर के मौके पर मुंबई में माओं की गजाइयत की किट्स तकसीम की। जनाब गोयल ने इज्तम से खिताब करते हुए कहा कि खसूसी तौर पर तैयार की गई इन किट्स को हमल के आखिरी मरहलों में खवातीन की गजाई जरूरतों और नौमौलूद बच्चों की जरूरतों को जहन में रखकर तैयार किया गया है। महाराष्ट्र की रियासती खवातीन कमीशन की साबिक चेयरपर्सन रूपाली चकनाकर से खसूसी तहकीकाती टीम ने नासिक में खुद साख्ता बाबा अशोक खरात से मुबैना ताल्लुक के मामले में पूछताछ की। अशोक खरात के जरिए जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात और उसके सियासी रवाबित के ताल्लुक से छानबीन के लिए यह खसूसी तहकीकाती टीम SIT तश्कील दी गई थी। IPS अफसर तेजस्वी सतपुते की क्यादत वाली SIT ने नासिक में वाक़ महाराष्ट्र पुलिस अकेडमी में आज से तहकीकात का आगाज किया। भारत और ट्रिनिडाड और टोबैगो ने सेहत सियाहत हिफ्जान सेहत बुनियादी ढांचे और आयुर्वेद समेत मुख्तलिफ शोबों में 8 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। ये दस्तखत वजीर खारजा SJ के करेबियाई मुल्कों के 2 रोजा दौरे के दौरान किए गए। वजारत खारजा ने बयान में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमत नामों पर यह दस्तखत ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की वजारत खारजा और कैरिकॉम उमूर की इमारत को शमसी तवानाई से लेस करने, पानी से पैदा होने वाली बीमारियों पर काबू पाने, नेल्सन जजीरे के बुनियादी ढांचे की तस्दीद करने के मकसद से किए गए। डॉक्टर जयशंकर का यह दौरा कल मुकम्मल हो गया। उन्होंने अपने इस दौरे में वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसर और दीगर सीनियर रहनुमाओं से बातचीत की। ये बातचीत दो तरफा तआवुन को तौसी देने से मुतल्लिक मीटिंग में पिछले साल ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे में किए गए ऐलानात पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में एक पुलिस चौकी को निशाना बनाकर किए गए खुदकुश हमले में 15 सिक्योरिटी अहलकार हलाक जबकि मुतअद्दी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हमला कल उस वक्त हुआ जब सिक्योरिटी अहलकारों ने पुलिस चौकी की तरफ बढ़ते हुए धमाका खेज मादे से लदे ट्रक पर फायरिंग की जिसके नतीजे में धमाका हुआ। धमाके के बाद कई बंदूक बरदारों ने पुलिस चौकी पर हमला किया जिसके नतीजे में शदीद गोलीबारी हुई। इस शदीद बम धमाके में पुलिस चौकी तबाह हो गई और कई सिक्योरिटी अहलकार मलबे में दब गए। आज बांग्लादेश के एक हाई कोर्ट ने एक वकील के मुबैना कत्ल केस में सनातनी जागरण ज्योत के तर्जमान चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने जमानत की दिगर 4 दरखास्तों पर अपने अहकामात महफूज रखे हैं। इस केस का ताल्लुक 2024 में चट्टग्राम अदालत के अहाते में पुरतशद्दुद झड़पों के दौरान एक वकील सैफुल इस्लाम की हलाकत से है जब चिन्मय पुलिस हिरासत में थे। ईरान ने मगरबी एशिया में जंग खत्म करने के मकसद से अमरीका की ताज़ा तरीन तजवीज़ पर अपना जवाब बाकायदा तौर पर दाखिल कर दिया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने तस्दीक की है कि इस जवाब में कहा गया है कि इस मरहले के मुज़ाकरात में खित्ते में तनाज़े को ख़त्म करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। यह बयान ऐसे वक्त दिया गया है जब अमरीका के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और वजीर खारजा मार्को रूबियो जंग ख़त्म करने पर बातचीत के लिए कतर के वजीर आजम से मुलाकात की है। रूस ने यूक्रेन पर इल्जाम

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची केंद्र के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पे। रात्रि के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है गजलों का कार्यक्रम महफिल। पहली गजल हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। कैफी आज़मी और सुषमा आहूजा की गजल है, संगीत दिया है रवि ने।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम महफिल में। आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में चंद गजल, और ये अगली गजल है भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में।

हम आकाशवाणी के चाय वासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 101.7 MHz पे। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज़ में, फिल्म ससुराल का ये खूबसूरत सा गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: और अब सुनते हैं फिल्म यहूदी का गीत लता मंगेशकर के स्वर में।

ताजमहल, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। सावन कुमार के लिखे गीत को संगीत से सजाया था उषा खन्ना ने। और अब सुनते हैं फिल्म टावर हाउस का गीत लता मंगेशकर के स्वर में।

सजा इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में सफ़र। आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत, किशोर कुमार की आवाज़ है, इंदिवर के लिखे गीत को संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही श्रोताओं कार्यक्रम सुरों के रंग अब यहीं पे संपन्न होता है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री

अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।